नमस्कार श्रोताओं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आज दिन है शनिवार, सक संवत 1948, अश्विन महीने की आज 18वीं तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 अक्टूबर महीने की आज 10 तारीख है। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार सुबह के 5:56 और 42 सेकंड हो चुकी हैं। इसी के साथ मैं शर्मिला सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आरंभ करती हूँ आज की पहली सभा।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली

0: और बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार जो रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अब आपको देते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। तत्पश्चात आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। समय रहेगा 6:40 का। 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले के जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात 7:05 पर आप सुनेंगे आज का दिन, साथ ही सुनेंगे पोएम ऑफ द डे। 7:30 पर एक खास महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, जिसे प्रस्तुत करेंगी तृष्णा चक्रवर्ती और आज की हमारी अतिथि रहेंगी बरखा शर्मा।

श्रोताओं, 8 बजे और 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। वहीं इसके तुरंत बाद 8:30 पर आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

सुरू की रंगोली कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे सुबह के 8:40 पर। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुन पाएंगे पुआर आंचलिक बातुरी 9:15 पर आरंभ किया जाएगा स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को, जिसके तहत सबसे पहले आप सुन पाएंगे खेलमा भक्ति गीत गायक कलाकार जॉन इलियाजर लोंगलो और उनके साथियों की आवाज़ में। रांगखोल कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे रांगखोल भक्ति गीत जिली लांगथोंगमई रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में। समय रहेगा 9:25 का। 9:35 पर आप आनंद ले पाएंगे जयंतिया भक्ति गीत, गायक कलाकार होंगे भबोक सिंह साई और उनके साथी। दार्चिंग लेंगमार और उनके साथियों की आवाज़ में आप सुन पाएंगे बेटे भक्ति गीत। समय रहेगा 9:45 का। श्रोताओं 10:00 आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को शाम के 5:00 तक। इसी बीच आप सुन पाएंगे 12:00 हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 12:01 फिर से हिंदी में समाचार, जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद मिड डे न्यूज आप सुन पाएंगे। इसके बाद 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, समय हो चला है भक्ति गीतों के कार्यक्रमों को आरंभ करने का। आज के इस कार्यक्रम

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का भक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये आकाशवाणी का हाफलोन केंद्र है, चलिए अब आनंद लेते हैं कुछ देशभक्ति गीतों का।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र के कथित लीक होने के संबंध में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ था। बाद में यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधान सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम के नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना हुई। इन 6 सीटों पर उपचुनाव मंगलवार को हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का दिन। आज का दिन प्रस्तुत करने से पहले चलिए सुनते हैं पहले आज की कविता, जिसे प्रस्तुत किया है सबिता जोशी ने।
2: नमस्ते, मेरा नाम सबिता जोशी है और मैं हाफलोंग के अपर पगिटर गांव में रहती हूँ। मैं हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज की कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है टूटा पहिया और उसकी रचयिता धर्मवीर भारती जी है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुर्हा चक्रव्यूह में असोहिनी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहाती आवाज को अपने ब्रह्मशास्त्रों से कुचल देना चाहे। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मशास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति साहस झूठी पड़ जाने पर क्या जाने, सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का दिन। दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है। साल के 12 महीने का ये 10वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। जानेंगे आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जानेंगे आज के दिन जन्मे और आज के दिन मरे कुछ खास व्यक्तियों के नाम। दोस्तों, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और वर्ल्ड पोस्ट डे भी है। साथ ही श्रोताओं, आज सर्व पितृ अमावस्या है, जानेंगे इसके बारे में थोड़ी सी बातें। श्रोताओं, आज आर के नारायण जी की पुण्यतिथि भी है, जानेंगे इनके बारे में भी थोड़ी सी बातें। श्रोताओं, चलिए अब जानते हैं आज के दिन घटी कुछ प्रमुख घटनाएँ। सन 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता पे प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सन 1924 में शिकागो में स्थित लॉयला विश्वविद्यालय के लेके सोर परिसर में अल्फा डेल्टा गामा बिरादरी की स्थापना की गई। सन 1942 में सोवियत संघ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की शुरुआत की। सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट में 800 जिप्सी बच्चों को मार डाला गया था। सन 1964 में टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया। सन 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि प्रभावी हुआ। ये संधि 27 जनवरी 1967 को किया गया था। सन 1970 में फिजी स्वतंत्रता हुआ था। सन 1971 में अमेरिका के ओरिजनों के लेके हवासू शहर में लंदन ब्रिज को पूर्ण निर्मित किया गया था। इसे ब्रिटेन में खरीदकर और तोड़कर अमेरिका लाया गया था। सन 1986 के सैन सल्वाडोर में रिक्टर पैमाने पर 7.05 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। इसमें लगभग 1,500 लोगों की मौत हो गई थी। आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर हुई थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को मानसिक बीमारी के बारे में शिक्षित करना है। श्रोताओं, ये थी कुछ घटनाएं जो आज के दिन घटी थी। चलिए अब जानते हैं आज के दिन जन्मे कुछ खास व्यक्तियों के नाम। सन 1995 में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी सुनीता मुखर्जी का जन्म हुआ था। सन 1988 में मंजीत सिंह, जो भारतीय रोवर एथलीट है, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। सन 1899 में श्रीपाद अमृत डांगे, जो भारत के परिभक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे, उनके जन्म भी आज के

दिन हुआ था। सन 1906 में आर के नारायण का जन्म हुआ, जो भारतीय उपन्यासकार थे। दोस्तों, रेखा जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था, सन 1954 में। सन 1933 में मदन मोहन पुंजी, जो भारत के भूतपूर्व 28वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। सन 1924 में बलवीर सिंह, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। सन 1923 में शिवराज रामशरण, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। सन 1920 में प्रकाश चंद्र सेठी, जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। आज के दिन सन 1912 में डॉक्टर रामविलास शर्मा, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। सन 1910 में द्वारकानाथ कोटनिस का जन्म हुआ, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन में निस्वार्थ सेवाएं देते हुए जान देने वाले भारतीय डॉक्टर थे। सन 1902 में के शिवरम करंट कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। श्रोताओं, ये थी उन खास व्यक्तियों के नाम जिनका आज के दिन जन्म हुआ था।

चलिए अब जानते हैं आज के दिन निधन हुए कुछ खास व्यक्तियों के नाम। सन 2022 में मुलायम सिंह यादव, जो एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। क्षमा कीजिए, उनका निधन आज के दिन हुआ था। सन 2015 में मनोरमा जो एक तमिल अभिनेत्री थी, दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री थी, उनका निधन भी आज के दिन हुआ था। सन 2011 में जगजीत सिंह का निधन हुआ था, जो गजलों की दुनिया के बादशाह थे। एस आर बोमाई जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, जिनका निधन भी आज के दिन सन 2007 में हुआ था। सन 1983 में रूबी मेयर, सन 1930 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, उनका निधन भी आज के दिन हुआ था। सन 1974 में लुडमिल पावलिचेक को, जो दूसरे विश्व युद्ध की वीरांगना महिलाओं में से एक थी, उनका निधन भी आज के दिन हुआ था। दोस्तों, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये पहली बार 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहली पहल पर मनाया गया था, जो एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है, जिसके सदस्य और समर्पक 150 से अधिक देशों में है। इस दिन हजारों समर्थक मानसिक बीमारी और दुनिया भर में लोगों के जीवन पर इसके प्रमुख प्रभावों पर ध्यान देने के लिए इस वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम को मनाने के लिए आते हैं। कुछ देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, ये दिन मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का हिस्सा होता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को उप महासचिव रिचर्ड हंटर की पहल पर मनाया गया था। 1994 तक इस दिन सामान्य मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और जनता को शिक्षित करने के अलावा कई विशेष थीम नहीं थी। 1994 में तत्कालीन महासचिव यूजिन ब्रडी के सुझाव पर पहली बार एक थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। पहली थीम दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार थी, और इस वर्ष का थीम है लिव्ड एक्सपीरियंसेस हार्ट रियल वॉइसेस रियल चेंज। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को WHO द्वारा समर्थित किया जाता है, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य मंत्रालयों और नागरिक समाज संगठनों के साथ अपने मजबूत संबंधों को उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य के मददों पर जागरूकता बढ़ाता है। WHO तकनीकी और संचार सामग्री विकसित करने में भी सहायता करता है। पहले वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी करते हुए तत्कालीन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जेकी डायल प्राइस को यूके के पहले आत्महत्या रोकथाम मंत्री के रूप में नियुक्त किया। श्रोताओं, आज वर्ल्ड पोस्ट डे भी है, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें। विश्व डाक दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो सार्वभौमिक डाक संघ UPU की वर्षगांठ है, जिसकी शुरुआत 1874 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। UPU वैश्विक संचार क्रांति का आरंभ था, जिसने दुनिया भर में लोगों को पत्र लिखने की सुविधा प्रदान की। विश्व डाक दिवस की शुरुआत 1959 में हुई थी। तब से दुनिया भर के देश डाक सेवा के महत्व को उजागर करने के लिए समारोह में भाग लेते हैं। इस दिन कई गतिविधियां होती हैं। कुछ देशों के डाकघर विशेष डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनियों आयोजित करते हैं। डाक उपायों पर खुले दिन होते हैं और डाक इतिहास पर कार्यशालाएं आयोजित किए जाते हैं। UPU युवाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखने प्रतियोगिता का आयोजन करता है।
सन 1969 में यूपीयू 9 अक्टूबर को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ डाक सेवाओं की वार्षिक घोषणा करता है।

विश्व डाक दिवस पर जारी किया गया 1998 का एक रूसी डाक टिकट डाक प्रणाली कई सदियों से चली आ रही है। इतिहास में बहुत पहले से ही लोग एक दूसरे को पत्र भेजते थे। ये पत्र विशेष संदेशवाहकों द्वारा पैदल या घोड़ों पर सवार होकर पहुंचाए जाते थे। 17वीं शताब्दी से कई देशों में पहली राष्ट्रीय डाक प्रणाली विकसित होने लगी। ये अधिक विकसित थी और इनका उपयोग उनके अनेक लोग कर सकते थे। धीरे धीरे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डाक का आदान प्रदान करने पर सहमति जताई। 19वीं शताब्दी के अंत तक एक वैश्विक डाक सेवा स्थापित हो गई थी, लेकिन ये धीमी और जटिल थी। 1874 में यूपीयू की स्थापना ने आज की कुशल डाक सेवा का मार्ग प्रस्थान किया। 1948 में यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी बन गई। दोस्तों, आज सर्वपित्र अमावस्या है। सर्वपित्र अमावस्या हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे महालया अमावस्या भी कहा जाता है। ये पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा तर्पण तथा दान पुण्य करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या का महत्व हिंदी मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण और सम्मान करना बहुत शुभ माना जाता है। सर्वपित्र अमावस्या उन सभी पितरों के श्राद्ध के लिए विशेष दिन है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती या जिनका श्राद्ध किसी कारणवश नहीं हो पाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद पितरों का स्मरण किया जाता है और परंपरा के अनुसार तर्पण तथा श्राद्ध किया जाता है। कई परिवारों में ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है तथा अन्न वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान किया जाता है। लोग अपने पूर्वजों की शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या हमें अपने पूर्वजों के योगदान को याद करने और उनका सम्मान करने की सीख देती है। ये पर्व परिवार परंपरा और संस्कारों के महत्व को भी दर्शाता है। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और समाज में सेवा एवं करुणा की भाव

भावना को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। सर्वपित्र अमावस्या श्रद्धा सम्मान और कृतज्ञता का पर्व है। ये हमें अपने पूर्वजों को याद रखने तथा उनके दिए संस्कारों का पालन करने की प्रेरणा देता है। हमें इस दिन धार्मिक परंपराओं के साथ साथ दया, सेवा और मानवता के मूल्यों को भी अपनाना चाहिए। श्रोताओं, आज आर के नारायण जी की पुण्यतिथि है। चलिए जानते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें। आर के नारायण की जयंती प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास, भारत में हुआ था। उनका पूरा नाम राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। आर के नारायण अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार और लेखक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय समाज, संस्कृति और आम लोगों के जीवन को सरल एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में मालगुड़ी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स और द गाइड शामिल है। उनकी कहानियाँ आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय है।

साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई सम्मान मिले। आर के नारायण की जयंती हमें उनकी साहित्य योगदान को याद करने और पढ़ने लिखने के प्रति रुचि बढ़ाने की प्रेरणा देती है। भारतीय साहित्य में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। तो श्रोताओं, ये था आज का दिन यानी कि 10 अक्टूबर से जुड़े कुछ खास जानकारियाँ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलोंग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 पीएम। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब महिलाओं पर आधारित एक खास कार्यक्रम सुनते हैं, जिसे प्रस्तुत किया है तृष्णा चक्रवर्ती ने और आज की हमारी मुख्य अतिथि रहेंगी बरखा शर्मा।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मैं हूं आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती, और मैं लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है, नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्ते, मेरा नाम है जिदित। मैं एक टीचर हूँ और मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। मेरी हॉबी है गाना गाना और मुझे नए दोस्त बनाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि कल हो ना हो, जिंदगी का क्या भरोसा, जितना जीना है जी लो आज के लिए। और हमेशा याद रखना, किसी के दबाव पर कुछ भी ना करें, अपने दिल की बात सुने और मनमानी नहीं, अपने ही दिल की बात सुने और अच्छी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाए।
0: दोस्तों, वुमेन टाइम के बाद आज हमारे वुमेन प्रोग्राम में जो हमारी खास मेहमान है, चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको। डॉक्टर बरखा शर्मा फार्मा डॉक्टर क्लिनिकल ट्रायल्स डिपार्टमेंट में काम करती हैं। स्वागत करते हैं आपका।
2: थैंक यू सो मच
0: जी, आप अपने बारे में बताइए।
2: ओके, सो मेरा नाम डॉक्टर बरखा शर्मा है। मैं अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया था अपना डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मैंने किया था JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर से। तो अभी मैं जॉब कर रही हूँ फिलहाल, तो अभी तो क्लिनिकल ट्रायल्स डिपार्टमेंट ऐसा होल ऐसा बोल सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स डिपार्टमेंट, उसमें ही और भी हमारा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहता है। तो मैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में काम करती हूँ एज अ क्लिनिकल डेटा रिव्यूअर।
0: जी, जैसे आपने अपने वर्क को आपने हमें विस्तार से बताया है जी, आपने रिसेंटली ही कंप्लीट किया है, आपको जॉब ऑफर आया था या आपने पहले जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया था?
2: ये जॉब ऑफर मेरा कैंपस प्लेसमेंट था, तो मैंने खत्म किया था 2025 जून में। उसके बाद ही मुझे जून 30 को मेरा कॉन्वोकेशन था, थर्ड जुलाई से मैंने ज्वाइन किया था अपने जॉब में। तो उसके बाद आई वर्क देयर फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन उसके बाद मैंने ये जम किया। ये दूसरा कंपनी है जहाँ पे मैंने खुद से इंटरव्यू दे के अप्लाई किया था।
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अगर वो लोग बी फार्म भी कर रहे हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता है कि आगे क्या करना है, तो क्या आप पहले से डिसाइड कर चुकी थी अपने लाइफ को लेकर?
2: नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है मेरा। जब मैंने स्टडी स्टार्ट किया था इन माय हाई स्कूल स्टेज राइट, तब मेरा डिफरेंट ही था। मुझे बनना था डॉक्टर, आई वांटेड टू डू MBBS। उसके बाद मुझे बनना था MD, आई वांटेड टू डू न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मुझे करना था। तो पर क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे ना हमारा इतना ब्रॉड नहीं था थॉट राइट, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी और फिर हमारे सराउंडिंग्स में भी सबको ही बोलते थे कि आफ्टर 12 इफ यू टेक साइंस यू हैव टू गो फॉर डॉक्टर और एल्स इंजीनियर। तो फिर वैसे ही माइंड सेट था सब, मैं भी वैसे ही थी कि हाँ मुझे डॉक्टर करना है। तो फिर बाद में आफ्टर 12 मैंने दिया था, ट्राई किया था एग्जाम हमारा, तब CEE होता था स्टेट का, तो फिर मैंने वो ट्राई किया, तो उसके बाद नहीं हो पाया। मैं जनरल कैटेगरी की थी तो थोड़े मार्क्स से नहीं हो पाया था। देन आई थॉट कि ठीक है अभी क्या करो, तो तब कोई था भी नहीं, अभी तो बहुत सारा कैरियर गाइड वगैरह है, तो तब कोई नहीं था जिसको मैं पूछ सकूं, और फैमिली में भी वैसा कोई नहीं था। तो मैंने फिर रिसर्च किया, देन आई फाउंड आउट कि फार्मा फिल करके एक दूसरा कुछ होता है। देन मैंने अप्लाई किया था और मुझे मेरिट बेसिस में मिला था सिक्किम में, अंडर सिक्किम यूनिवर्सिटी मैंने बी फार्म किया था पहले। उसके बाद आई वर्कड फॉर ईयर में भी, उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर फार्मेसी किया। ये मुझे भी नहीं पता था पहले कि दिस कोर्स एग्जिस्ट, तो मैं जब बी फार्म कर रही थी तब मुझे पता चला एंड देन आई वेंट फॉर इट। तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था, मैं जब डॉक्टर फार्मेसी कर रही थी तो मुझे रतन टाटा के थ्रू टाटा स्कॉलरशिप जो होता है वो मिला था, 1,40,000।
0: जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कह सकते हैं कि जो आपके लिए लिखा है वो आपको जरूर मिलता है।
2: जी,
0: कभी कभी जो हम सोच कर रखते हैं वो नहीं होता है, बट हाँ, अच्छा ही होता है जो होता है। जी, आपने जिसे बताया कि गाइडेंस नहीं मिला था एक वक्त था आपके लाइफ में, ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं सभी स्टूडेंट्स के बारे में, कैसे डील किया आपने?
2: तब तो बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ता है। व्हेन आई वाज इन 12 तब तो मैं पूरा फोकस थी कि हाँ आई विल डू MBBS, तो मैंने ट्राई भी किया, बट वो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे नहीं मिलेगा। आई वाज वेरी पॉजिटिव कि मिलेगा, बट वैसा हो के नहीं मिला तो यू हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर टाइम भी कम रहता है,
1: जी
2: राइट?
1: जी
2: जब तुम्हारा रिजल्ट आता है एंड लाइक यू डिडंट गेट थ्रू दैट लाइक व्हिच यू वांटेड एंड देन यू हैव टू डिसाइड अनदर कैरियर इन द शॉर्ट फ्रेम, तो आई थिंक वो थोड़ा हेक्टिक रहता है. एंड आई डिड, तब तो इतना AI की जमाना भी नहीं था, वी हैड गूगल, तो गूगल सर्च ही किया था मैंने बहुत सारा कि कैसे क्या करना चाहिए क्या है, तो फिर मुझे वैसे ही पता चला कि बी फार्मा है करके, देन आई वेंट टू बी फार्मा. तब अगर मुझे पता चलता कि डॉक्टर फार्मा करके है, वो एक्चुअली आफ्टर 12 भी हम कर सकते हैं, तो वो लाइक मुझे नहीं पता चला, बट आई डोंट रिग्रेट, आई एम हैप्पी व्हाट आई डिड एंड लाइक अभी मैं खुश हूँ. मेरे पास एक लाइसेंस भी है, आई ओन माय ओन फार्मेसी
1: जी
2: महादेव टीला में, इधर है शर्मा मेडिकोस करके, एंड लाइक मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो या आई थिंक आई एम ओके, आई एम हैप्पी.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स रियली ग्रेट, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए.
2: थैंक
1: जी,
2: यू.
1: आपने जिससे बताया फार्मेसी के बारे में, कितने टाइम हो गया है आपके फार्मेसी को?
2: आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 4 years now.

0: और फिर डिफरेंट कल्चर्स राइट, उनका बारे में बहुत सारा कुछ पता करने का मन करता है. मुझे फूड भी उनका डिफरेंट कल्चर का अच्छा लगता है. सो मोस्टली आई विल से ट्रैवलिंग, एंड इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग, इफ आई एम एट होम और समथिंग, तो तब भी कुछ करने का मन. तो इफ आई एम नॉट वर्किंग, इफ आई एम फ्री, तो मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है. लाइक आई लव टू कलेक्ट प्लांट्स और फिर पॉट करना
1: जी
0: पसंद
1: जी
0: है.
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। जैसे आपने ट्रैवलिंग की बात की है,
0: जी
1: हम जानना चाहेंगे कि आपने अब तक कितने प्लेसेस ट्रैवल कर चुके हैं आप।
0: मैंने तो बहुत सारा, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट इंडिया अभी तक. तो मैं
1: जी
0: एक सोलो ट्रैवलर रह चुकी हूँ पहले, लाइक 2023 से मैंने स्टार्ट किया था सोलो ट्रैवलिंग. मैंने तब, मुझे इतना याद तो नहीं है, मैं मणिपाल या फिर मैं कुर्ग गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, सोलो गई थी. तो वो उधर कर्नाटका में ही पड़ता है. तो फिर वैसे मैं सोलो स्टार्ट किया, एंड आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस नाउ. लाइक मैं रिसेंटली लद्दाख गई, फिर रोड ट्रिप किया था मैं हिमाचल, पर मेरा प्लान था ओनली हिमाचल, पर बाद में आई एक्सटेंडेड टू लद्दाख एंड देन कश्मीर. फिर आई हैव बीन टू हिमाचल मैनी टाइम्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है
1: जी
0: उधर
1: जी
0: हिमाचल में, तो आई कवर्ड दैट. उसके बाद साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना में सब वो सब हो गया है मेरा. और हमारे महाराष्ट्र से मैं पुणे ही गई हूँ बस उधर,
1: जी
0: और गुजरात, राजस्थान वो सब बाकी है. तो इस साइड भी वेस्ट बंगाल, सिक्किम, दार्जिलिंग वो सब हो गया है. नॉर्थ ईस्ट में भी मेरा आई थिंक नागालैंड और मिजोरम बाकी है अभी.
1: जी इट्स लाइक कि आपने बहुत सारे प्लेसेस आप ऑलरेडी घूम चुकी हैं
0: जी
1: और आगे का भी आपका प्लान है
0: जी
1: घूमने का।
0: हाँ
1: जी ये तो काफ़ी अच्छी बात है जी। जिससे आपने बताया कि आप काफ़ी
0: जी
1: घूमती हैं,
0: जी
1: तो आपका वर्क फ्लेक्सिबल रहता है?
0: हाँ मेरा अभी, पहले तो नहीं था फ्लेक्सिबल. पहले तो मैं, मतलब अगर चाहे तो आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो, और नहीं तो मेरा हाइब्रिड मोड रहता था. लाइक आई हैव टू गो टू ऑफिस फॉर 2 डेज एंड द रेस्ट इज वर्क फ्रॉम होम, ऐसा. तो अगर आपको कहीं पे जाना हो या समथिंग, तो आप वर्क फ्रॉम होम लेके जा सकते हो या फिर लीव्स. तो सैटरडे संडे ऐसा ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे एक हो जाता है. उसके बाद बाकी अगर आप वर्क फ्रॉम होम करो तो अपने शेड्यूल से पहले आप घूम के आ सकते हो. तो मैं ऐसे ही करती हूँ. अभी तो मेरा कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है,
1: जी
0: तो अभी मेरे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि मैं कहीं पे जाती हूँ तो सैटरडे संडे तो एक हो गया, लाइक इट्स द चेरी ऑन द टॉप बोल सकते हैं, कि पूरा मिल जाता है आपको 2 दिन. बाकी के दिन, जैसे कि मैं यूके शिफ्ट में काम करती हूँ, तो मेरा 2 to 11 PM रहता है. तो 2 से पहले मैं कर लेती हूँ. अगर कहीं पे जाना है सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज देख के आ जाओ, एंड देन लाइक यू गो समवेयर, हैव फूड और कहीं पे चिल करके, फिर 2 बजे से आई कैन स्टार्ट, आई कैन लॉग इन. तो ऐसा मैनेज हो जाता है. अगर आप चाहो तो कर सकते हो.
1: जी
0: अगर
1: जी
0: हम पहले से सोचे कि कैसा होता है, तो आई थिंक कभी पॉसिबल नहीं होगा कुछ में भी,
1: बिल्कुल
0: राइट.
1: बिल्कुल। वीकेंड आपका ऑफ रहता है जी। जैसे आपने बताया आपके वर्क के बारे में,
0: जी
1: क्या आप एंजॉय कर रही हैं अपने वर्क को?
0: हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पहले अपना कैरियर स्टार्ट किया था फार्माकोविजिलेंस से. तो उधर लाइक, मतलब आई वांट टू जस्ट बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं फार्माकोविजिलेंस में इतना मुझे नहीं पसंद आया था वो. दैट्स अ वेरी नाइस जॉब एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है कि मेडिसिन्स, हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स 4 फेज में होता है, फेज 1, 2, 3 एंड 4. तो विजिलेंस होता है फेज 4, मतलब आपका ड्रग्स मार्केट में आने के बाद अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट्स है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा कि मेडिसिन के पैकेट में लिखा होता है कि एक्सपेक्टेड ये
1: जी
0: नोजिया,
1: जी
0: वॉमिटिंग या समथिंग, राइट, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड. अगर वो हो गया तो कस्टमर्स वो लोग कंप्लेन करते हैं, या फिर हेल्थ केयर में जो है सब कोई कंप्लेन करते हैं, तो उसको ही हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं कि वाई इट्स बिकमिंग लाइक दिस, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, वाई इट्स शोइंग दिस इफेक्ट, राइट. तो उसको फिर स्टडी करा जाता है. अगर हमारे तरफ से अगर इट्स मिस्टेक फ्रॉम द मैन्युफैक्चर साइड, तो फिर आई थिंक वो ज्यादा आगे तक जाके इट माइट गेट बैंड ऑल्सो. तो वो जॉब वैसे इंटरेस्टिंग है, पर मेरा जो रोल था वो थोड़ा हेक्टिक रहता था और लाइक बहुत प्रेशराइजिंग. एक दिन में ही बहुत ज्यादा केसेस मुझे हैंडल करना
1: जी
0: पड़ता था.
1: जी
0: तो मैंने सोचा कि आई जस्ट ट्राई फॉर समथिंग एल्स. तो मैंने वही ट्राई किया था, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, अभी जहाँ हूँ मैं. तो अभी आई एम लाइकिंग दिस जॉब, आई एम लाइक क्वाइट एंजॉइंग ऑल्सो. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लिनिक क्लिनिकल ट्रायल, ये तो और भी आगे की फेज होते हैं, जैसे कि फेज 1, 2, 3, ये 3 फेज में उसका काम चलता है हमारा। तो जो जितने भी पेशेंट्स के ऊपर, पेशेंट्स नहीं बोलूंगी, लाइक वॉलंटियर्स जो होते हैं राइट, जो क्लिनिकल ट्रायल्स में टेस्टिंग के लिए आते हैं, को मतलब वो लोग कंसिडर करते हैं एज अ वॉलंटियर, तो उनका ही

0: बोर्ड्स हम हमेशा पढ़ते, हम हमेशा देखते हैं, स्टडी करते हैं पूरा एनालाइज, क्योंकि एक ड्रग को मार्केट में आने के लिए इट टेक्स एन एवरेज ऑफ 15 ईयर्स. तो वो ड्रग आने से पहले जितना भी वो हमारे सिस्टम में काम करता है, लाइक आप डिफरेंट इंडिविजुअल हो, मैं डिफरेंट इंडिविजुअल हूँ, रीजन वाइज भी डिफरेंट इंडिविजुअल है, तो सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट काम करता है.
1: जी
0: तो वी स्टडी लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वॉलंटियर्स, तो वो सबका पूरा रिपोर्ट बना के फिर स्टडी वाइज असाइन करते हैं जॉब में. तो मेरे पास अभी लगभग 10 स्टडीज है, तो मैं 10 स्टडीज देखती हूँ, तो वो 10 स्टडीज मैनेज हो जाता है मेरे से. तो अभी तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, और ये
1: जी
0: लाइक हमारे लिए कर रहे हैं, राइट, फॉर द वेलबींग. यस, आई एम
1: जी
0: एंजॉयिंग
1: ये तो
0: इट.
1: बहुत ही अच्छी बात है सुनकर। काफ़ी अच्छा लगा कि आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं,
0: जी
1: क्योंकि जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं।
0: यस, करेक्ट.
1: जी जैसे हमारा ये वुमेन प्रोग्राम है, मैं जानना चाहूँगी कि आपसे वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है।
0: फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट तो आई थिंक इट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट, क्योंकि अभी मुझे, मेरे पास अगर, इफ़ आई हैड नथिंग, राइट, इफ़ आई वॉज डिपेंडेंट ऑन समवन, और मुझे चाहिए था कहीं पे घूमना जाना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आई वुड हैव बिन बैगिंग समवन
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल
0: प्लीज़ मुझे ये दिला दो, या फिर मुझे दो थोड़ा लाइक हेल्प मी सो दैट आई कैन ट्रेवल समवेयर. तो वो वैसा नहीं होना चाहिए, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, आई फील, वीमेन को, क्योंकि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत सारा स्किल्स है, वी कैन डेवलप, अपना स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं, और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम सर्च करके, हम कुछ ना कुछ करके वी कैन, इफ आई डोंट से हियर कि वी शुड अर्न सो मच, राइट, लिटिल अमाउंट ऑल्सो इफ यू अर्न, आई एम वेरी हैप्पी. इफ आई अर्न वेरी लेस अमाउंट ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उतना से आई कैन डू वट आई वॉन्ट, राइट. तो अगर अभी जैसे कि मैं घूमना जाती हूँ, तो मैं किसी को नहीं मांगती हूँ, मैं अपने जितना भी इनकम करती हूँ, मैं
1: जी
0: आई
1: जी
0: सेव दैट एंड आई गो विद दैट. क्या होता है, वैसे मुझे खुशी भी लगता है. इफ आई आस्क समवन, इफ आई आस्क माई पेरेंट्स और समवन, राइट, तो मुझे लगता है कि अरे मैं पैसा मांग के मैं घूमने जा रही हूँ, वो गिल्ट एक फील
1: जी
0: होता है मुझे. तो आई फील कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दैट इज़ लाइक विच इज़ मोर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सेकेंड इज इट बिल्ड कॉन्फिडेंट इन यू, राइट, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. सो कुछ भी करो तो यू कैन से कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ खुद से, मैं ये करूँगी.
1: बिल्कुल
0: या आपको अगर कुछ चॉइस होता है, आपका कुछ ड्रीम्स होता है कि मैं ये करना चाहती हूँ वो करना, आप कर सकते हो विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। जी हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूंगी आपकी जिंदगी का कोई बेस्ट मेमोरी।
0: बेस्ट मेमोरीज तो बहुत सारा है. लाइक
1: जी
0: मैं वैसे तो एक ऐसा याद नहीं कर सकती, पर बहुत सारा है. अभी रिसेंटली भी मैं जैसे कि घूमने गई थी, तो लद्दाख में आई डिड अ रोड ट्रिप. मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं लद्दाख इतना जल्दी जा पाऊंगी. लाइक मैं सोची थी कि जाना है, पर प्लान नहीं था कि लद्दाख
1: जी
0: जाऊंगी, राइट. तो हिमाचल से अचानक से वैसा हुआ कि हाँ चलो चलते हैं, आई वेंट विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड, तो वैसा हो गया. एंड इट वॉज फ्राइडे आई गेस, तो मेरा वर्किंग ही था उस दिन. तो फिर हमने तभी सोचा कि रात को कि लेट्स गो टू लद्दाख, ऐसा हो गया. मेरा सब प्लान्स घूमने को जब जाती हूँ इट्स स्पॉन्टेनियस, लाइक मेरा कुछ आइटिनरीज वैसा नहीं रहता. वैसे मैं आइटिनरी बना के दोस्तों को देती हूँ, पर मैं खुद से आई नेवर फॉलो दैट. तो फिर वैसे स्पॉन्टेनियस ही हुआ कि चलो चलते हैं ऐसा. देन वी जस्ट बुक्ड अ कार, तो हम 4 लोग थे. फिर बाद में उसके बाद वैसे ही हम रोड ट्रिप किया. तो रोड ट्रिप टू लद्दाख इज लाइक आई से कि करना चाहिए सबको एक बार, क्योंकि उधर की लैंडस्केप्स अभी भी मेरी आंखों में आती है. लाइक यू नो द लैंडस्केप्स ओवर देयर, इट्स सो डिफरेंट. आप हर एक टर्न में इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप, एकदम अलग है. तो
1: जी
0: लद्दाख मुझे बहुत ही अलग लगा, बहुत सुंदर था. और कश्मीर भी सुंदर था, कश्मीर इट्स लाइक फुल्ली ग्रीन, इट वॉज फुल्ली ग्रीन मैं जब गई थी. पर लद्दाख, हाँ, मतलब मेरे सारा, मैं जितने भी घूमी हूँ अभी तक टॉप में लद्दाख ही गिरता है.
1: जी
0: और एक मेमोरी आपको मैं बोल सकती
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: तो वो मतलब बचपन का था, राइट, मुझे अभी जस्ट ट्राई किया. हम लोग छोटे थे, आई वॉज आई थिंक इन स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 6, 5th या 6th ऐसा. तो फिर मेरी एक बहन है, तो मैं और मेरी बहन युक्ता, हम दोनों ऐसे निकले थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए. तब इट वॉज 6 or 6:30 AM इन द मॉर्निंग. तो मेरे आसपास मेरे मामा लोग के भी घर है, तो एक मामी ने मुझे बोला कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला कि हम मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि इन लोग को भी लेके जाओ, इन लोग मतलब माई कजिन्स. तो मैंने बोला ठीक है. फिर मेरा भाई और एक बहन था, उनको भी बुलाया. तो फिर हमने सोचा कि, और दो मामा के बेटे भी थे, तो
1: जी
0: हमने सोचा कि उनको भी ले लेते. तो हमने बोला ओके ठीक है आ जाओ. फिर हम लोग 6 लोग हो गए. तब मेरे पापा माहौर में थे, लाइक ही यूज टू वर्क देयर.

0: तो उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो फिर मैंने बोला था कि पापा मेरे आ रहे हैं, हम जाते हैं पापा को लेने के लिए। आई वॉज द एल्डेस्ट वन अमॉन्ग देम। तो फिर मैं रहती हूँ भंजंग में, अब माधेतिला से नीचे, राइट। तो फिर उधर से नीचे मुल्होई होके लोअर हफलोंग का स्टेशन था तब, तो वो छोटा नैरो
1: जी
0: गॉज,
1: जी
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: वो ट्रेन चलता था। तो हमने सोचा कि ठीक है पापा को लेने चलते हैं। तो फिर वो शॉर्टकट, वो रास्ता से आई थिंक न्यू रास्ता बन रहा था या समथिंग, मुझे इतना याद तो नहीं है। उधर से आई थिंक लोअर हफलोंग पहुँचने इट टेक्स 30 मिनट्स, आई एम नॉट दैट श्योर ओके कितना टाइम लगता है बाई व्हीकल नाउ, बट वो इज वेरी लॉन्ग रास्ता। देन वी वेर लाइक हाँ चलो पापा को लेने चलते हैं। तो फिर हम सब कोई गए एंड वी वेर लाइक वॉकिंग वॉकिंग, हमें इतना भी नहीं समझ में आया कि कितना टाइम हो रहा है। तो लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट 10:30 वेन वी रिटर्न बैक। तो हमारे पेरेंट्स को तो नहीं पता अब कहाँ चले गए ये लोग, ये लोग तो मॉर्निंग वॉक जाने की बात कर रहे थे। तो फिर उधर हमारे आस पास फुल लोकेलिटी को पता चल गया कि हमारे बच्चे गुम हो गए, नहीं है ये लोग कहीं पे भी। तो
1: जी
0: सब कोई मतलब ढूंढने के लिए स्टार्ट हो गए। कुछ भैया लोग थे, हम भैया लोग थे हमारे, तो वो लोग गए थे लेक के तरफ, हाफलोंग लेक के तरफ, झटिंगा के तरफ, सारा जगह मतलब वो लोग ने छानबीन किया। मेरे आंटी लोग रहते थे उधर टाउन में, तो वो लोग भी उधर भी ढूंढ रहे, तो नहीं मिला। फिर बाद में मम्मी एंड आंटी, उन लोग को पता नहीं कैसे माइंड में आया कि इस तरफ जाना चाहिए करके, तो उन लोग को हमें मिला। एंड देन वी वर लाइक सो चिल, हमें कुछ भी नहीं पता था कि हाँ हमने कुछ किया है कि इतना लेट हो गया है। वी वर लाइक कमिंग वेरी स्माइलिंग एंड वी वर वेविंग आर हैंड्स जब हमने देखा मम्मी और आंटी को। तो फिर बाद में जब घर पहुंचे देन वी सॉ कि अरे ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा कांड टाइप हमने कर दिया है।
1: जी
0: वी वर वेरी स्कैर्ड। नानी, फिर हमारी नानी थी लाइक उन्होंने सबको फिर पिटाई दिया। आई वॉज सेव्ड, आई डिडंट गेट दैट, सो वो हमेशा मुझे याद
1: जी बिल्कुल
0: रहेगा।
1: काफी मेमोरेबल है, याद
0: जी
1: रहना ही
0: जी
1: चाहिए। जी आप अपनी लाइफ में आगे और क्या करना चाहेंगी?
0: आगे तो मैं अगर प्रोफेशनली बोलूँ तो आई वॉन्ट टू ग्रो मच इन माई कैरियर। तो अभी मैं तो जस्ट स्टार्टिंग है मेरा, राइट। आई एम वर्किंग एज अ क्लिनिकल डेटा रिव्यूअर। तो अभी मुझे और आगे जाना है, आई वॉन्ट टू लर्न स्किल्स। मैं सीनियर से भी बहुत हेल्प लेती हूँ, लाइक डे गाइड। ऑफिस में मुझे अच्छे स्टाफ्स भी मिले हैं, राइट, बहुत अच्छे हैं। मेरे मैनेजर्स लोग तो बहुत अच्छे सीख देते हैं। तो मुझे और अपस्किल करना है लाइक प्रोफेशनली। लाइक मैं जो स्टडी किया है वो तो अप्लाई हो रहा है, पर लाइक वो तो सबको आता है, राइट। तो उस से अलग यू कैन अपस्किल योर सेल्फ के मतलब कुछ और सॉफ्ट स्किल्स या फिर कुछ टेक्निकली आप लर्न करते हो तो वैसा और आगे बढ़ने का चांसेस रहता है। तो वैसा मुझे आगे बढ़ना है और भी अच्छा करना है कैरियर में। और तो घूमना तो वो हमेशा है मुझे, तो आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ऐसा है मेरा। आई वॉन्ट टू
1: जी
0: ट्रेवल द वर्ल्ड, सो आई एम थिंकिंग ऑफ दैट। आई डू, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मेरा एम ऐसा है, पर लाइक या आई वॉन्ट टू डू दैट। एंड या मोस्टली मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली को खुश रखना है। दे शुड नॉट लाइक यू नो, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ कमी हो या समथिंग। आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन ऑफ अस टू बी हैप्पी, वही है।
1: जी ये बहुत ही अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि आपने जितना जो भी सोचा है वो बिल्कुल पूरा हो। जी
0: थैंक
1: हाँ, जिसे हम कार्यक्रम के अंत तक आ ही चुके हैं, मैं
0: यू।
1: चाहूँगी कि जितने भी श्रोता है आज आपको सुन रहे हैं, सबको आपकी तरफ से एक मैसेज शेयर कीजिए।
0: ओके, सब कोई जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। एंड आई होप एवरी वन टू बी लाइक वेरी हैप्पी, एंजॉइंग योर लाइफ, राइट। दुख या सुख तो वो तो आते रहता है और हमें सिर्फ उसको डील करने के लिए जानना पड़ता है। तो इट्स लाइफ, सो एवरीथिंग विल कम एंड गो। और मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग जो करना चाहते हो करो, क्योंकि इफ यू थिंक कि मैं ये बाद में करूँगी, इधर कर ये उधर जाना है तो मैं ये बाद में जाऊँगी, तो आई थिंक वो बात कभी नहीं आता है। तो आप जो सोच रहे हो, जो करना है, तो लिव इन द प्रेजेंट एंड डू इट। कुछ मत सोचो आसपास के बारे में या फिर वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। अगर हम ऐसे सोचने लगे तो इट्स लाइक नेवर गन बी हैपन। तो मैं सबको बोलती हूँ कि हाँ आप लोग सब अच्छे से रहना और कीप लर्निंग। थैंक
1: जी
0: यू।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी रही और आज आपकी बातों ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है, एंड बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं आज आपकी बातों से वो ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी
0: जी,
1: पता है कि इस फील्ड में सक्सेस मिल सकता है इंसान को। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं पर आधारित एक खास कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया था तृष्णा चक्रवर्ती ने। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं एक गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और पंकज उदास ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीत फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार, फिर अंग्रेजी में समाचार, और इसके तुरंत बाद आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं, प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन

0: गालिम लोशन,
1: गालिम लोशन, गालिम लोशन, गालिम लोशन, वो है गालिम लोशन।
0: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग गालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
5: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
4: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्व

0: गजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
1: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
0: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जनसेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
2: बिरसा मुंडा गांव गांव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
0: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
3: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
4: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
5: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
4: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
5: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
4: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Akashwani presents Morning News. Good morning. I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 International to level 5-match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be developed as centers of community participation. He said families living near Anganwadi centers should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys, and other locally relevant items for children. Discussing issues related to women's safety, Mr. Modi advised the development of age-appropriate modules for children on women's safety, dignity and empowerment. He also stressed the importance of preventive measures through coordinated efforts across various departments. Prime Minister Modi has stressed the need for young people to continuously upgrade their skills and adapt to emerging technologies amid rapid technological advancements. He made these remarks while interacting with members of Team India who participated in the World Skills Competition Shanghai 2026 at his residence in New Delhi yesterday. Congratulating the participants on representing India on the global stage, Mr. Modi urged them to develop skills in line with the requirements of the international market. He also encouraged them to contribute to strengthening India's skill training ecosystem by sharing their experiences and suggestions, and urged them to become ambassadors of skill development.
8: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है आपके पास क्या है कितनी डिग्रियां हैं उसका अपना महत्व है ही लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं.
7: The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. The Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the party's previous failure to adhere to Delhi Police guidelines.
9: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
7: The Joint Commissioner warned that Delhi Police will now take appropriate legal action against anyone found violating the law. More from our correspondent.
10: Ahead of the proposed protest at Jantar Mantar today, elaborate security arrangements have been made across the national capital. DCP Railway B. Bharat Reddy said that 334 government railway police personnel, including around 120 women personnel, have been deployed in 7 major railway stations in Delhi.
11: Law and order maintain करने के लिए हमने special deployments किए हैं. Delhi में 7 major railway stations हैं. उन पे सभी पे हमने round the clock deployment किया है. Total हमने 334 जो GRP के police personnel हैं, वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं. Plus हमने CAPF की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे.
10: Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed today till 6 p.m. These include Janpath, Patel Chowk, Central Secretariat, Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, New Delhi Seva Tirth, and Mandi House. The Delhi Metro Rail Corporation said that the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates will be shared accordingly. It said that, however, interchange change, facility will remain available at all the concerned stations except New Delhi Metro Station, Namo Bharat train services between Saraikala Lekha and New Ashok Nagar Namo Bharat stations in Delhi will also remain closed today till 10 p.m. During this period, Namo Bharat train services between Anand Vihar station in Delhi and Modipuram station in UP stations will continue to operate as per schedule. Furthermore, in view of the law,

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। साथ ही नॉर्थ ईस्ट न्यूज आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुन रहे हैं सुरों की रंगोली कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे जाने माने गायक कलाकार मन्ना डे के गाए कुछ बेहतरीन गाने।
1: हेलो हाफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।
3: दादी, कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का सुरों की रंगोली कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से सुनते हैं आंचलिक बातोरी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आंचलिक बातूरी रिले किए गए थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब वक्त हो चला है आज की पहली सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को आरंभ करने का। ये आनंद लेते हैं कुछ खेलमा भक्ति गीतों का। गायक कलाकार जॉन इलियाजर लोंगो और उनके साथियों की आवाज में।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जॉन इलियाजर उन लोगों और उनके साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे खेल माँ भक्ति गीत। इसी गीत के साथ ही हमारा आज का खेल माँ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं रांगखोल कार्यक्रम में कुछ रांगखोल भक्ति गीत। गायक कलाकार होंगे जिली लियनथांग मोई रांगखोल और उनके साथी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लियांथोंग मोइरांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में रांगखोल भक्ति गीत। इसी गीत के साथ ही हमारा आज का रांगखोल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं जैंतिया भक्ति गीत भबोक सिंह साई और उनके साथियों की आवाज़ में।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जे इंडिया भक्ति गीत। गायक कलाकार थे भाबोक सिंह साय और उनके साथ ही फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब पेश है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों की अंतिम पेशकश, बेते भक्ति गीत, गायक कलाकार दर्थिंग लेम्मार और उनके साथियों की आवाज में।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

सभी इन्वेस्टर जागरूकता।

Rama, nerhlavai.

0: Salem, Ivan.
1: Okay, Salem.

0: श्रोताओं, गायक कलाकार दार्चिंग लेंगमार और उनके साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे बेटे भक्ति गीत। इसी गीत के साथ ही आज का स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं, यानी वक्त होता है विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनने का। इसी के साथ मैं शर्मिला आप सभी से लेती हूँ इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रमों को।
1: और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती,
3: गीतों भरी कहानी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
1: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे

खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे? जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या, छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं, अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। 3 भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं, क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी

आती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी, सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हां, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहां लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती, हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है, मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थीं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी कुदरत

ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा, हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला, वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आज़ादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना, यही चाहती हैं आप। क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूं। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूं मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहां। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूं, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना। इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है, इसमें बुराई क्या है, लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर, पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी, पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों की झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार, गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: ये फिजाएं बुला रहे हैं तुम्हें।
1: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सरपीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
2: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं?
1: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोरते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिला कर रह गई।

घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या 3 भाई बहन मिलाकर 5 लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर 3 लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में

विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहां पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं, हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहां ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थी, मालशेज घाट में देखे फूल मुरझा गए थे, बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही, इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निस्संग पाया, डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था, बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती, वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

हाय स्वीट हार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओह अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो सही, कौन है? पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है? प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चल ना चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है। अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है, आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्यों, क्यों घबरा रही हूं मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है? आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर आंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? अब किसके साथ रहोगी है? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना? मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर

से आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी। कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई, खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी, हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
2: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मैटिनी शो कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने।
5: विविध भारती के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वेलनेस गुरु यानी फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर राज अशोक शेट्टी जी को। राज अशोक शेट्टी जी, विविध भारती के स्टूडियो में हम आपका स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार।
6: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर।
5: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
6: बहुत बढ़िया, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, कोई मुझे दिखते नहीं थे, लेकिन अंदर बहुत सारे काम चल रहा है
5: जी।
6: फैंटास्टिक, आई एम फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू
5: जी। डॉक्टर राज, हमें बताइए कि आज हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपनी सेहत से, और उसे किसी न किसी दवा की जरूरत पड़ती है। और हमने जो आपके बारे में जाना है वो ये कि आप लोगों को फिट रखने के बहुत सारे गुर बताते हैं, बहुत सारे नुस्खे बताते हैं कि वो बिना दवा के अपने को फिट रख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है 4+1=100, जबकि 4 और 1 का जोड़ तो 5 होता है, तो ये फॉर्मूला क्या है और इसके बारे में बताइए, और किस तरह से इसे दिनचर्या में शामिल करें?
6: ये आजकल ने बहुत पहले से ही चलते आ रहा है कि भाई लोग परेशान है हेल्थ को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में नहीं बात करके सबको इसके बारे में जानते ही है। और 4+1=100, इसको मैजिक ऑन बॉडी फार्मूला बोलते हैं। तो ये मैजिक करता है।

0: एक ऐसा करता है कि हर एक इंसान को ये फॉर्मूला लागू पड़ता है।
1: जी
0: ये हम ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, हमको तो अच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक को तकलीफ जिंदगी में होता ही होता है। तो 4+1=100, ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी है, मेरा वाइफ के लिए भी है, मेरे बच्चे के लिए भी है, और मेरी माँ बाप के लिए भी है। तो मैटर ये बनता है, वॉट इज एग्जैक्टली 4+1=100, ये फॉर्मूला क्यों बनी है, इसी में
1: जी
0: मैंने PhD किया हुआ है। तो
1: अच्छा
0: इट इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन,
1: जी
0: तो थीसिस का नाम है 4+1=100 ओबेसिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है।
1: जी
0: तो पंच तत्व से अगर शरीर आया है तो पंच तत्व में ही विलीन होने वाला है।
1: जी जी
0: तो पंच तत्व से आए हुए शरीर को आपको 5 पावर्स देना होता है। तो पंच तत्व अगर हम बात करते हैं तो हमारा, अगर आप हम हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट
1: जी
0: इज अ +1, ये अग्नि तत्व है।
1: जी
0: फिर आता है उसके बगल का 4, ये 4 उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व।
1: जी जी
0: 4 उंगली को अगर हम गिनते हैं तो सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100, 100 साल की जिंदगी होती है। तो ये फार्मूला मेरा नहीं है, ये कुदरत का फार्मूला है। हर एक को इसे अपनाना बहुत जरूरी होता है।
1: जी
0: तो ये कुदरत से आए हुए फार्मूला से अगर हमारा शरीर बनी हुई है तो इसे 5 पावर देना जरूरी है। वो
1: जी
0: क्या 5 पावर है? वो 5 पावर होता है, सबसे पहला होता है अग्नि तत्व, दैट इज अ परिश्रम देना जरूरी है। फिर आता है वायु तत्व। तो वायु तत्व यानी कि आपको श्वास कैसा लेना है, कैसा छोड़ना है और कैसा रिटेन करना है।
1: जी
0: फिर आता है स्लीप यानी कि
1: जी
0: नींद कैसा लेना है।
1: जी
0: फिर आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यानी कि आप खाना कैसे खा रहे हो,
1: जी
0: कितना न्यूट्रिशन बॉडी को देना है, कैसा देना है, उसके बारे में बातें होती है, सुनना जरूरी होता है। फिर आता है जल तत्व, ये पानी का महत्व,
1: जी
0: शरीर में कितना पानी देना है, ये बस इतना ही है। ये 4+1=100 अगर एक इंसान समझ लेता है तो उनको पूरा जिंदगी भर वो खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं होगा और दवाई से तो दूर ही रहेंगे।
1: जी
0: तो ये रियलिटी है। तो ये 4+1=100 इज 100 ईयर्स ऑफ लाइफ, 100 साल तक जीने का सही तरीका।
1: जी
0: तो मैं
1: जी
0: ये फॉर्मूला अपना खुद के ऊपर भी अपना रहा हूँ। मेरा इस वक्त आप मेरा एज देख रहे हो तो 63 का हूँ, और मुझे लगता है कि और भी कुछ साल तक मैं इससे फिट रहूंगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर
1: जी
0: यही फॉर्मूला मैं अपनाता रहूंगा।
1: बिल्कुल। अब आपने अपनी उम्र बता दी है लेकिन हमारे श्रोता आपको देख नहीं पा रहे हैं। हम उनको बता दें कि आप बिल्कुल 63 के नहीं लग रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि 33 तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन 43 से आगे आप नहीं दिख रहे हैं, 40 के अंडर 40 दिख रहे हैं।
0: बस यही फॉर्मूला का इसका बदौलत है।
1: तो वो जो फॉर्मूला है ये तो आपने बता दिया, और इस बारे में आपने PhD की, वो 5 तत्वों की जानकारी आपने दी। 5 तत्वों का समायोजन अपनी जिंदगी में कैसे करें, क्या करें कि ये सब कुछ ऐसा फिट रह सके, मतलब वो तत्व क्या है, और
0: बस
1: जैसे आपने कहा वायु तत्व, और कितनी फूड लेना है, कितनी नींद लेना है, तो उसका मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी
0: या
1: दीजिए।
0: अगर आप बोल रहे हो ना कि इंसान बहुत परेशान है, बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बड़ों की बातें नहीं सुन रही है, और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट्स इतना आते हैं, ललचाओं एडवर्टाइजमेंट इतना सारे आते हैं, बहुत सारे जो खाने का पैकेट्स देख करके बच्चे ललचा जाते हैं, जो भी आप देखते हो तो बच्चों को लगता है कि ये मुझे खाना चाहिए, वेफर से लेकर के हर रोज चीज़। और ऐसे बड़ों में भी क्या हो गया कि घर में खाना कम बनता है, पार्सल बहुत ज़्यादा बाहर से आता है, और जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो एक्चुअली नहीं होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी इतना सारा हो
1: जी
0: चुका है, जो परिश्रम होना चाहिए वो है ही नहीं है, तो जो पसीना निकलना चाहिए वो नहीं निकलते, जो किसी को भी थोड़ा मेहनत परिश्रम लेकर करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ये पूरा हर एक चीज़ आप अगर देखते तो रोड रेजेस भी अगर होता है तो परेशान होकर घर से निकलते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। और उसके अलावा भी क्या है कि जो एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं लोगों में, जल्दी गुस्सा आ जाता है
1: जी
0: और इरिटेट हो जाते हैं। और ये पूरे चीज़ का मेन कारण क्या है कि नींद, ठीक से नींद नहीं करना, ठीक से पानी नहीं पीना, ठीक से श्वास नहीं लेना, और ठीक से खाना नहीं चबाना, और ठीक से परिश्रम नहीं करना, ये इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे जो श्रोतागण जो है, जो
1: जी
0: लिसनर्स जो है, वो अपना लाइफ डे टू डे में उतार सकते हैं। ये कैसा हो सकता है? देखिए, हमारा शरीर तो कुदरत से आया है, वो तो गारंटी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीर कुदरत से आया, कुदरत में ही जाने वाला है, जहाँ से आया वहीं पर ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो 5 पावर कुदरत ने जो नियम दाया था, सी एक फिलोसॉफिकल बातें करता हूँ कि
1: जी
0: जब कुदरत जब हमको शरीर दे रहा था तो हमारे ऊपर एक नियम कानून था। जब ये मैं आकाशवाणी का अंदर आया तो गेट में बोला गया था कि भाई आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, परमिशन लेके आना है, पूरा एक नियम कानून है, तो नियम कानून के अंदर ही हमें रहना है। ऐसा कुदरत में जब हमको ये शरीर मिला था, कुदरत ने कंडीशन

0: परसेंट है, हमें इतना पानी देना है, सिर्फ 12% खाना देना है, यानी कि न्यूट्रिशन देना है. फिर आते हैं 6% अपने को नींद देना है
1: जी,
0: 6% श्वास देना है, सिर्फ 4% हमें लेबर देना है. तो ये इतना चीज हमें शरीर को देना है, ये समझना जरूरी है. ये समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार से हमें बात करना जरूरी है. तो पॉइंट ये बनता है कि 100% अगर हमको रहना ये दे दिया तो कुदरत खुश होकर के 100 साल के ऊपर 20 साल और हमें बोनस में मिलेगा. सो 120 साल की जिंदगी गारंटेड हो जाती है. और आजकल अर्ली एजिंग आ रहा है, लोग जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं. जब तक जिएंगे बीमारी से जिएंगे
1: जी,
0: तो बहुत परेशान होके जिएंगे. पूरा अगर आप जिंदगी का 25% 30% जो रस्ते में बोलते हैं ना, हम लोग ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं और बाकी 25-30% झगड़े में गुजार देते हैं, बाकी 25% कन्फ्यूजन में गुजारते हैं, मांड हम जी लेते हैं. तो जब 100 साल की जिंदगी कुदरत ने दिया है, ये 5 चीजों को समझ लेंगे ना, रोड रेजेस रहेगी ना, हम ज्यादा करके गलत सिस्टम में नहीं रहेंगे और अपने आप को अच्छे से जी सकते हैं, रोज अच्छे से जी सकते हैं. दैट मीन्स यू शुड, वी कैन लिव इन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में बहुत सही तरीके से जी सकते हैं.
1: जी,
0: तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है कि हम पानी से शुरू करते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, उस बेस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे.
1: कैसे
0: आप क्या बोलते हो,
1: कैसे पीना चाहिए पानी और कैसे खाना चाहिए, बताइए.
0: आप देखिए, मैंने बोला 72% हमारा शरीर जो है पानी में, हमारे जो टिश्यूज बोलते हैं ना, जो मांस होता है, अब आंख है, कान है, हड्डी छोड़ के बाकी पूरा पानी ही है एक्चुअली, टिश्यूज. दैट इज अ 72%. यानी कि अगर आप अंतरिक्ष से धरती को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, 75% पानी दिखती है, 25% आपको जंगल और जमीन दिखती है. तो हमारा शरीर भी वही है, आपका जो 1/3 जिसको हम बोलते हैं. सो दैट इज हमारा पानी कैसा होना चाहिए. आपका वजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक ये मैं जो बोल रहा हूँ सुनना जरूरी है कि आपका वजन कीजिए. दाखला तरीके, मेरी वजन इस वक्त 70 kg का है. अगर मैं 70 kg का हूँ तो मुझे कितना पानी पीना चाहिए, मुझे एक बात बताइए ममता जी, पानी आप कितना पीते हो दिन का?
1: हमें तो ऐसे नहीं आकलन कर सकते. हाँ, एक बोतल रहती है साथ में, एक बोतल दिन में, और मुझे लगता है रात को एक बोतल दो दो ढाई लीटर तक मुश्किल से पानी पी लेते
0: हैं. मतलब कोई प्रॉपर कैलकुलेशन
1: नहीं, प्रॉपर कैलकुलेशन.
0: आप 1 लीटर भी पियेंगे या 3 लीटर भी पियेंगे?
1: हाँ,
0: प्यास लगे तो कभी कभी 1 लीटर पूरा पी लिया.
1: हाँ, कभी कभी बोतल यूं ही रखी रह जाती है, भूल जाते हैं.
0: दैट मीन्स दैट इज अ प्रॉब्लम. कुदरत ने आपको नियम बनाया था, आपको मेरा बॉडी में 72% पानी तो देना ही है
1: जी.
0: और बॉडी में पानी जो है हर आधा घंटे में कम से कम 30 ml पानी निकल जाता है. 72% पानी में अगर मान लीजिए कि 5% निकल जाएगा तो कितना बचा, उतना परसेंटेज बचा, 68-70% बचा. फिर हर आधा घंटे में पानी बाहर निकल रहा है तो हमारा पानी संतुलन 72% तो हमें रखना ही है. एनी गिवन टाइम पानी 72% से कम नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी. उससे ज्यादा पानी देंगे ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम पानी भी नहीं होना चाहिए. अगर हर आधे घंटे में पानी, अगर इतना पानी जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को रिप्लेस करना जरूरी, यानी कि जितना पानी गया उतना पानी आपको पीना जरूरी है. दैट मीन्स पूरा दिन में, यानी कि 8 घंटा अगर आप सोने का निकाल देते हो, 16 घंटे में आपको कम से कम 30 बार पानी पीना चाहिए. वो भी कितना पानी चाहिए, एनी गिवन टाइम कभी भी आपको आधा ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए. कोई बोलते कि 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पीना चाहिए, नहीं, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा. तो हमें पानी थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए. जैसे कि घर के अंदर पूल का पौधा है तो पानी हमको छिड़कना पड़ता है, अब बाल्टी भर के पानी तो नहीं डालेंगे.
1: बिल्कुल.
0: सो दैट इज द रीजन कि हमको एक साथ में पानी उठा करके ऊपर से पानी पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए. तो पानी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. इसके लिए 72% ही आपको रखना जरूरी है. दैट मीन्स एक कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी अगर वजन 70 kg की है, ×3 करना है मुझे, 0.03%. दैट मीन्स 7 × 3 = 21, यानी कि 2 लीटर और 100 ml, यानी कि मुझे 2 से 2.25 लीटर पानी मुझे 16 घंटे में फिनिश करना है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ ये बॉडी के लिए 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 16 घंटे में आपको उसको डिवाइड करना चाहिए. आपका पानी का जो कैलकुलेशन है 16 घंटे में डिवाइड करेंगे तो आपका पानी का कैलकुलेशन मिल जाता है.
1: तो ये पानी के बारे में थी. अब मतलब आपने क्या कहा,
0: सिर्फ पानी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपना शरीर का. लोगों को पानी पीना नहीं आता बिकॉज वो पूरा बॉटल उठा के पी जाते हैं. वो नहीं पीना चाहिए, हवा में पीना नहीं चाहिए, होंठ पे लगा के पानी को खींचना चाहिए. ये ही लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है. पानी पीना आना चाहिए इंसान को. जब पानी पीने को अच्छे से आ जाएगा, देखिए आप बच्चा दौड़ के आएगा पूरा घटा घट करके पानी पिएगा, आधा लीटर 1 लीटर पानी पी जाएगा, वो भी जल्दबाजी में पिएगा, वो कभी नहीं करना चाहिए. थोड़ा शांत होकर के पीना जरूरी है. और हर आधा घंटे में अगर आप पानी पी रहे हो आपको प्यास लगेगी.

0: ही नहीं,
1: जी जी
0: यानी कि इंसान को कभी प्यास लगना नहीं चाहिए, तो प्यास लगने से पहले पानी पी लेना चाहिए।
1: और बच्चे तो ये भी कहते हैं, अरे मुझे प्यास नहीं लग, बच्चों को अगर कहा जाए पानी पीने के लिए, वो कहते हैं मुझे तो प्यास ही नहीं लगती, क्योंकि दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, उनको प्यास महसूस
0: बस
1: नहीं
0: यही
1: होती।
0: तो लाइफ स्टाइल
1: बच्चों की
0: पनिशमेंट।
1: और एक समस्या डॉक्टर साहब, वो है मोटापा, और उनकी जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन की लत, ये भी है। तो कई बार इससे जो बेचैनी के कारण एकाग्रता की कमी होती है बच्चों में, ये आजकल समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे में फिटनेस के लिए, बच्चों में एकाग्रता बनी रहे, उनका मोटापा कम हो, चिड़चिड़ापन कम हो, इन सब के लिए उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है और बच्चों की क्या भूमिका होती है, कैसे शुरुआत करें फिटनेस की और
0: देखिए,
1: कैसे बढ़ें?
0: पेशेंस जो है वो ना माता पिता ही दे सकते हैं। ओके, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रही है वो तो सोशल मीडिया की वजह से आ रही है, स्कूल पे ये तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है।
1: फिटनेस के लिए क्या करें
0: ओके,
1: वो
0: ये
1: शुरुआत करें?
0: कंपटीशन के साथ ही फिटनेस जुड़ा हुआ है, तो आपको कंपटीशन यानी कि आपको क्या बनना चाहते हो उस लाइफ में, उसके बेस पर होता है। पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं बच्चों को, ये करना ये करना, बच्चों को एक्चुअली उनमें क्या रुचि है। उसके बाद अगर डे वन से ही, बिगिनिंग से अगर आप घर के अंदर का वातावरण अगर ऐसा बना के रखेंगे, जैसे कि भाई थोड़ा सा जिम एक्टिविटीज़ होगा, या फिर यू नो पुलअप्स का कुछ हो सकता है, या फिर जैसे कि घर का जो बातचीत में क्या होता है, क्या बनना चाहते बच्चा, वो IPS बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, या फिर एक डिपेंड होता है बिजनेसमैन भी बनना है, तो उसके लिए फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। घर का डिसिप्लिन यानी कि कितना बजे उठना है, कितना बजे सोना है, ये सब कुछ आता है सोने पर। बच्चा कितना बजे सो रहा है, अगर वो 12-1 बजे के बाद सोता है, दूसरा दिन आप उसे कोई भी चीज़ को उम्मीद आप मत रखिए, बिकॉज वो चिड़चिड़ा रहने वाला है, बिकॉज बॉडी में जो रिपेयर होना था वो नहीं हो पाया। तो ये जो टॉपिक है ना, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, बिकॉज हम
1: जी
0: पानी का जो बात किया है, पानी का इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाना ज़रूरी होता है कि ये बच्चा हर आधे घंटे में प्यास लगने तक वेट नहीं करना है, प्यास लगने से पहले पानी पी लेना, बिकॉज बॉडी का नीड है, बिकॉज हर आधे घंटे में पानी बाहर जा रहा है, थ्रू यूरिन से जा रहा है, आंसू से जा रहा है, पसीना से जा रहा है, और हमारे पोर से पानी बाहर जा रहा है। अगर पानी बाहर जा रहा है तो पानी अंदर आना ज़रूरी है। अगर पानी ठीक से नहीं पियेंगे, बॉडी उनका ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, माल फंक्शन करेगा, इसका मतलब वो चिड़चिड़ा ही रहेगा और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा, लेथार्जी तक जाएगा, या कुछ चीज़ स्कूल में भी उनको नींद आने लगेगी, या फिर उनका पसीना बदबू आने लगेगी। ये पूरा सोशल इम्पैक्ट हो रहा है
1: एक
0: बच्चों में।
1: विज्ञान है, लेकिन यहाँ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो नुस्खे क्या हैं,
0: नुस्खे
1: वो फिटनेस के लिए नुस्खे कैसे उन्हें जोड़े, कि उन्हें एक्सरसाइज से जोड़ें, सांस के प्रयोग से
0: या इसके स्कूल का जो वातावरण कैसे उसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसमें हम कुछ नहीं सब बोल सकते कि स्कूल का क्या है हम नहीं जानते। अब स्कूल प्रबंधन वो तो करेगा, उनको क्या एक्टिविटी देना है क्या नहीं देना है वो बात हो जाती है। अगर स्कूल से बाहर आने के बाद की अगर हम बात करें, तो बच्चों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कुछ भी है उनका स्कूल वर्क जो है, रात को 8 बजे से पहले फिनिश करवा देना चाहिए। खाना जो है उनको 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए।
1: जी
0: ओके, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, उनके पास सिर्फ एंटरटेनमेंट थोड़ा देर के लिए होना चाहिए, दैट इज अ कोई भी चीज़, फिजिकल हो सकता है या टीवी हो सकता है, वॉट एवर द माध्यम, मोबाइल से नहीं। उसके बाद फिर वो जल्दी सो जाएंगे, सुबह अगर वो जल्दी उठ जाते हैं तो उनके पास बहुत टाइम होता है स्कूल के लिए।
1: जी
0: अगर मान लीजिए कि उनको 8 बजे जाना है, तो यहाँ पे वो लोग 7:30 बजे उठते हैं, फिर भाग दौड़ करते हैं, फिर उनके पास फिटनेस के लिए टाइम नहीं होता। अगर वो जल्दी सो जाते हैं तो उनके पास 2 घंटा एडवांसली मिलता है, उस 2 घंटे के अंदर उनका होमवर्क भी हो जाएगा और उनके पास एक एक्स्ट्रा आवर्स भी बचेगा। उस एक एक्स्ट्रा आवर्स में उनके पास अगल बगल में जिम होता है, आजकल हर सोसाइटी में जिमनाशियम्स होती है, इसका मतलब वजन उठाना नहीं होता है, कुछ एक्टिविटी, थोड़ा वॉक पे चले गए, रनिंग पे चले गए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, कुछ भी एक एक्टिविटी अगर कर लेंगे, उनका फिटनेस कहीं नहीं गया। एक की मतलब है कि उनके जल्दी सोने से सुबह उनको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है।
1: जी
0: लेट सोएंगे उसका कोई मतलब नहीं, वो कितना भी बड़ा होमवर्क क्यों ना हो, उन्हें लेट कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बॉडी का जो अंदर का जो रिपेयरिंग जो होता है, दैट हैपेंस ओनली बिटवीन रात का जो 11 से लेकर के
1: जी
0: सुबह का जो 2 बजे का जो टाइम का जो होता है, उस टाइम पर किसी को जागते नहीं रहना चाहिए। मुझे भी, आपको, बच्चों को, किसी को भी उस वक्त जागना नहीं चाहिए, उस वक्त सोना चाहिए, ताकि उनका बॉडी अच्छा रहे, फिर जाकर के उनका फिटनेस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आप कुछ भी बोलो बच्चे करने लगता है।
1: जी
0: अगर आप बच्चा देरी से सो करके, देरी से उठ के भाग दौड़ करके करेगा और बोले कि आप शाम को फिटनेस करो, तो वो नहीं हो सकता है, बिकॉज वो उसके लिए उसका बॉडी तैयार नहीं होगा। फिर हम जोर जबरदस्ती करेंगे, अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठेंगे तो अच्छे मन से सब कुछ कर पाएंगे, फिर उनमें एक ताकत आने लगती है, मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये बनना है, ये बनना है, उसमें चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, सोना बहुत जरूरी है, स्लीप पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर।
1: जी जी
0: जी,
1: बिल्कुल सही समय पर सोना, और आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है
0: नहीं
1: कि
0: सोते बच्चे,
1: पूरी
0: मोबाइल,
1: पूरी
0: बिकॉज
1: रात जग
0: हर
1: के
0: एक
1: पढ़ाई
0: का घर
1: करते
0: में
1: हैं।
0: आजकल क्या हो गया, दो दो तीन तीन कमरे तो है, बच्चे अंदर डोर लॉक करके क्या कर रहे हैं नहीं मालूम।
1: बिल्कुल सही।

0: दिस इज व्हाट अ घर
1: बहुत
0: के
1: बड़ी
0: अंदर का
1: समस्या
0: डिसिप्लिन
1: है
0: के ऊपर सब कुछ होता है।
1: जी।
0: जी
1: डॉक्टर राज, आपने मार्शल आर्ट किया है, कराटे सीखा है, और देख के ही लग रहा है कि आप तो बहुत फिट हैं, लेकिन ये कहना आसान है, करना बड़ा कठिन होगा। आपने तो लंबी, हमें लगता है, साधना की है, और बहुत सारे आपके वीडियोस देखे हैं जिसमें आपने बहुत सारे करतब भी दिखाए हैं। हमें बताइए कि अमूमन जैसे घर में लड़कियां होती हैं तो हम कहते हैं कराटे सिखाओ, क्योंकि वो आगे चलकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, तो किन लोगों को ये मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, किन लोगों को नहीं सीखना चाहिए?
0: आप अगर महिलाओं की अगर बात कर रहे हो, मार्शल आर्ट तो सबको सीखना चाहिए, अलग बात होता है। मार्शल आर्ट बहुत डिसिप्लिन्ड आर्ट होता है, बट बहुत मस्कुलिन एक्टिविटी औरतों को नहीं करना चाहिए। यानी
1: जी
0: कि कुदरत ने हमको दो नियम से भेजा हुआ है, एक वह पुरुष प्रकृति और एक प्रकृति है। प्रकृति मतलब माता है, यानी कि स्त्री है, और एक पुरुष है।
1: जी
0: क्या होता है कि भाई इट्स कुदरत ने बना के भेजा है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन। ओके,
1: डिफरेंस, एक
0: डिफरेंस
1: अंतर
0: वो
1: बना
0: है।
1: रखा
0: तो औरतों को औरतों का ही
1: है, एक्सरसाइज।
0: एक्सरसाइजेस होते हैं, उनका एक वातावरण, उनका चलने का हर एक वो चीज़ बिल्कुल नया नाजुकता होता है। वही चीज़ मर्दों में कम मिलता है, बिकॉज ऑफ मस्कुलिन होता है। तो इसके लिए मस्कुलिन प्रवृत्ति जो होती है, जो प्रोटेक्टर बनते हैं वो, कि भाई एक है तो उनका एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना, या
1: जी
0: फिर स्पोर्ट्स करना फलाना, यानी ये पूरा एक चीज़ होती है। मगर आजकल वो जो 50% जो बोलता है ना, जो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, वो
1: जी
0: कानून बना दिया ऐसा, बट कुदरत ने नहीं बनाया है। कुदरत ने औरत को औरत ही बनाया है, मर्दों को मर्द ही बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा औरतों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, उनका जो मसल्स, इतना कुदरत ने नहीं दिया है जितना मर्दों को दिया
1: उतनी
0: है।
1: ताकत भी नहीं दी है,
0: ताकत नहीं
1: उतनी
0: दिया,
1: एनर्जी
0: बिकॉज
1: भी नहीं
0: उनका
1: दी।
0: अलग किस्म का ताकत, ताकत है मगर वो अलग तरीके का होता है। बट आजकल क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा लोग वेट ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, औरत 35 साल के बाद उनको वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कितना वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डर ने मसल्स नहीं दिखाना है। ओके, वो चीज़ अलग, वो फील्ड अलग, वो स्पोर्टिव फील्ड होती है, वो फील्ड में जाने वाले फिर उसी में रहते हैं, वो ऐसे बन जाते हैं। एक औरत जो है, औरत का एक्टिविटी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है, उसको वो नया नाजुकता रहेगा। फिर आगे जाकर के बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा किक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे, तो उसमें उनका चलने का चाल बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, मेल का जो हॉर्मोन्स होता है वो उसमें आने लगते हैं। दैट मीन्स उनका देखो एक चाल ही उनका अलग पड़ जाती है, तो फिर वो उनका ड्रेसिंग अलग हो जाती है, फिर एक औरत से धीरे धीरे धीरे वो मर्द में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही मर्दों को औरतों का औरत जो एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि कुछ हार्मोन इम्बैलेंस होता है। इसका मतलब वो एबनॉर्मल होते हैं ऐसा नहीं है, रहेंगे सब कुछ ठीक ही रहेगा। बट मेरा सलाह, मैं मार्शल आर्ट अगर कर रहा हूँ तो मेरा क्लासेस में मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा कराटे रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करवाता हूँ। औरतों के एक्सरसाइज जो होता है वही हम करवाते हैं, जो
1: जी
0: उनमें आगे जा करके उनमें कोई तकलीफ ना हो, उनका जो लोअर एरिया में कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनमें बॉडी का स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए ना, कि ये सब से हम सोच समझ कर एक्सरसाइज करते हैं। जो
1: जी
0: इंस्ट्रक्टर होते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए, कि वहाँ जा करके सीखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि फिल्म देख लिया, किसी ने कुछ भी करवा दिया, कोई बहुत लेग स्प्लिट करवा दिया, और ये सब मस्कुलिन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा औरतों को नहीं करना चाहिए। बस एक बात है कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए अपना प्रोटेक्शन के लिए, मगर अच्छे तरीके से। यही मैंने वापस पानी पे आया, पानी लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, नींद लेंगे और श्वास अच्छे से लेंगे, फिर ये जो परिश्रम सिर्फ 4% से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उनको कभी भी सेल्फ डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो बहुत समझदार बन जाते हैं, वे कोई गलत रास्ते में जाएंगे ही नहीं हो। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है ना हमारे, वो पकड़ के ही चलना है।
1: और ये बड़ी सही बात बताई कि अमूमन लड़कियों को ये बोला जाता है कि उनको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए, जूडो कराटे में डाल देना चाहिए, तो ये सही बात बताई कि किन लोगों को चाहिए, ज़रूरत है, किन लोगों को नहीं ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात जहन में आई है, वो ये कि डिप्रेशन और चिंता से परेशान हाल लोगों के लिए व्यायाम, फिटनेस के उपाय कितने कारगर होते हैं और किस तरह से?
0: देखिए, फिटनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हर एक के लिए, औरत मर्द का कोई इसमें भेद नहीं होता है। बच्चे वेलनेस मैनेजमेंट बोलते हैं कि उनका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। आजकल प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीज़ के ऊपर है। हर एक को जो सोने से लेकर के उठने तक, जाकर अगर हम पानी एडजस्टमेंट कर लिया तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आता है। तो न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, खाना खाने के बाद आपका नींद कैसा हो, नींद के बाद आपका ब्रेथ कैसा हो, ब्रेथ के बाद आपका परिश्रम कैसा हो। तो इसका मतलब क्या कि फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है,
1: जी
0: सिर्फ योगा ही काम नहीं आता, एरोबिक्स ही काम नहीं आता है, जुम्बा ही काम नहीं आता है। तो आपका वेलनेस मैंने आपका ब्रीथिंग, आपको पहले अपना शरीर को पहले समझो, आपका शरीर क्या बोलता है, इस वक्त आपका वजन क्या है। कोई कोई ऐसा है कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100 किलो के ऊपर चले जाता है, उनका पोस्चर खराब हो जाता है, चलने में दिक्कत, घुटने में तकलीफ,

0: ओके, फिर उसके बाद घर का जो बहुत माहौल कुछ सही नहीं होता तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों को मिला करके वहाँ पर तकलीफें शुरू होती है। तो इसके लिए अगर वो एक सही वेलनेस गुरु के अंडर पहुँच जाते हैं, अगर उनका सुबह अगर अच्छा हो जाती है, रात तक वो सही रहेंगे, यानी कि उनका जो एक्सरसाइज में इतना कैलोरीज बर्न होना चाहिए,
1: जी
0: जितना आप कैलोरी खाते हो उतना कैलोरी आप सही तरीके से बर्न कर रहे हो, और
1: जी
0: आपका बॉडी अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हो, और आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा है, आपका जो ब्रेन फंक्शन अगर सही है, आप ब्रेन को कितना ट्रेन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स ऑल डिपेंड होता है कि आप सुबह का एक आधा एक घंटा 2 घंटा आप कहाँ जाते हो, किधर आपका टाइम व्यतीत करते हो, और किसके साथ आप बैठते हो, क्या करते हो। ये जो आजकल गार्डन में जो एक्सरसाइज होता है, पूरा घूम के आते हैं सब, हर एक को सुबह जल्दी उठ करके 1.5-2 घंटा देना ज़रूरी होता है। फिर कुछ लोग दोपहर को एक्सरसाइज करते हैं, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, नेसेसिटी नहीं होता है। आप सुबह का सिस्टम सेट करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, और कुछ 1-1.5 घंटा अपने लिए दे दो। फिर बाकी बचा 8 घंटा सोने का अगर छोड़ेंगे तो बाकी बचा 14 घंटा, 14 आवर्स आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं।
1: जी
0: कोई क्लेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है।
1: जी
0: इसका मतलब सब कुछ आपका सुबह का 2 घंटे के ऊपर आधारित
1: जी
0: है।
1: तो वो 2 घंटे में कुछ टिप्स आप बता सकते
0: या
1: हैं हमारे
0: आपको
1: जो
0: अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर योग कर लेना चाहिए, एरोबिक्स होता है या जिम होता है, मतलब अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होना ज़रूरी है, वो ट्रेंड होना ज़रूरी है कि आप मिलजुल के कैसे एक्सरसाइज, आप घर पे भी कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन भी बहुत हो जाता है, हर वो चीज़ आपको मिल जाती है, सब कुछ है, मगर डिपेंड होता है आप कितना लेजी है। ये बोलते हैं कि नहीं आज टाइम नहीं, आज ऐसा हो रहा है, आपके पास बहाने बहुत है, एक्सरसाइज नहीं करने के लिए बहाने लाखों है।
1: जी बिल्कुल टाइम
0: ओके,
1: नहीं
0: हाँ जी,
1: है।
0: टाइम नहीं होता है,
1: हाँ
0: बट आप टाइम निकाल सकते हैं। आपके पास कुदरत ने 24 घंटा दिया है,
1: जी
0: आप उसमें 7 से 8 घंटा सोने का निकाल देंगे, 16 घंटा आपके पास है, 16 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो।
1: बिल्कुल
0: ओके, आप 8 घंटे से ज़्यादा क्या काम करते हो, 9 घंटा, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होता है। फिर बाकी बचा 8 घंटा क्या कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हस्बैंड जल्दी जाते हैं, ओके, या फिर किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, रात को लेट आते हैं, या बच्चों का, या हर एक चीज़ को मैनेज करना औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी स्मार्टली खुद के लिए 2 घंटा निकाल के सब कुछ पॉसिबल है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, 12-14 घंटे का काम है, तो उनके लिए बीच में भी समय होता है जहां पर वो छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते
0: बहुत बहुत कुछ आता है।
1: हैं। डॉक्टर राज, हमें यहाँ बताइए कि बहुत कम उम्र की लड़कियों में आजकल PCOD की समस्या होती है और उनकी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती, खान पान की दिक्कतें होती हैं, तो क्या फिटनेस का जो फंडा है आपका, इन जो एक्सरसाइजेज वगैरह, इन सबसे कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है,
0: जी,
1: किस तरह से, बताइए।
0: एक तो प्योरली रिलेटेड स्ट्रेस भी होता है, थोड़ा
1: जी
0: हेरिडिटी फैक्टर होता है उनपे, वार्षांगित जिसको बोलते हैं, कि उनका मास है और उनका मास से आता है, तो ये बात तो है ही। पर आजकल का जो खाने पीने का जो तरीका जो है, खास करके बहनों में, औरतों में, तो ये थोड़ा सा एक गांव की बात अलग है, बट सिटी में जो ज़्यादा करके रहते हैं बाहर के खाने पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, और खास करके जो IT सेक्टर में जो महिलाएं काम करते हैं, या फिर जैसा कॉरपोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं, पूरा दिन बैठ के काम करते हैं,
1: जी
0: ओके, बैठा रहना एक इश्यू बनता है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाएगा तो उनका जो नींद का पैटर्न सही नहीं होता है,
1: जी
0: बहुत लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं, और उसके अलावा बैठे रहते हैं और खाना कोई ढंग का नहीं खाते, ये रियलिटी है, ये एक रीज़न है। और ऊपर से मोटापा, एक वेट जो उनका होना चाहिए, आपका वेट बहुत आसानी से माप सकते हैं कि 1 फुट होता है, 12 इंच होता है, तो 1 फुट का 12 किलो, ऐसे 5 फुट का है, औरत 5 और 5, 1 5 सौ 5 2 5 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 का हाइट के होते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो एनीथिंग 55 kgs to 70 kg का बीच में होना चाहिए किसी को भी। अभी आजकल 80-90 से ऊपर क्रॉस हो रहे हैं कुछ लोग,
1: जी
0: तो यही हिसाब से जब होता है तो एक ओवर वेट की वजह से मेरे ये पूरा अंदर का सिस्टम बदलने लगता है। फिर भी उसका उपाय क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप वेट कंट्रोल पर रखो, ब्रीथिंग अच्छे से करो, और खाना न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही तरीके से करो, और सही तरीके से योग अभ्यास करेंगे, कभी भी PCOD का प्रॉब्लम नहीं आता है, ये रियलिटी है। और मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं तो उनका विद इन 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बिकॉज सही तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं, और सही उनको परीक्षण मिल जाता है, उनको मालूम है कि कितना पानी पीना चाहिए, कैसा श्वास लेना चाहिए, कितना नींद होना चाहिए, ये हर एक चीज़ उनको आइडिया होता है। सो
1: जी
0: दिस इज वॉट इज, ये मैंने बोला ना कि 4+1=100
1: जी
0: फॉर्मूला
1: जी
0: अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं है।
1: जी
0: तो हमने
1: बिल्कुल
0: हमने पहले तो समझा था पानी का, समझ लिया ना, अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है, दैट इज अ भू तत्व, जल तत्व हो गया तो भू तत्व हो गया, और हमारे पास

0: भी चार पॉइंट बाकी है, दैट इज अ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट का बारे में देखना है, फिर आता है नींद का मैनेजमेंट देखना है, फिर ब्रेथ मैनेजमेंट देखना है, फिर लेबर मैनेजमेंट देखना है.
1: जी
0: तो दिस इज व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू.
1: जी
0: तो अगर आप कोई भी आप प्रॉब्लम लो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये फॉर्मूला के अंदर है.
1: जी,
0: तो
1: पांच
0: आपको
1: तत्वों
0: आप
1: में.
0: कुछ भी पूछो, आप फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप नींद कितना घंटा करते हो. तो नींद आप भले 8 घंटा करते होंगे, लेकिन कब सोते हो? अब बोलते हैं कि रात को मैं 12-1 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, बाकी बचा नींद मैं दोपहर को कर लेती हूँ. नो, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है. रेस्ट ले सकते हो. नींद जो लेना है आपको 24 घंटे में एक ही बार लेना है, 24 आवर्स में एक ही बार आपको नींद करना है.
1: क्या बात है.
0: हाँ, दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इश्यू. तो नींद इज क्या है कि भाई 8 घंटे का नींद, 7 घंटा मिनिमम सोना है, 8 घंटा मैक्सिमम सोना है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं.
1: जी
0: उससे ऊपर मतलब क्या हो जाएगा कि आपसे नुकसान शुरू हो जाएगा.
1: जी
0: कम
1: जी
0: नींद भी तकलीफ देता है, ज्यादा
1: जी
0: नींद भी तकलीफ देता है.
1: जी
0: सो मैटर इज वेरी सिंपल. तो आपका 4+1=100 में ये पांचों चीजों को मिलाना बहुत जरूरी है, वो परसेंटेज वाइज मिलाना जरूरी है. मैंने बोला 72%, 12%, 6%, 6% और 4%,
1: जी
0: तब जाकर के 100% हम जी सकते हैं.
1: जी तो आपने पांच तत्वों की बात की डॉक्टर साहब. आपने पानी का बोला कि वजन के हिसाब से इतना कैलकुलेट करना है, बाकी को कैसे
0: कि मैंने
1: कैलकुलेट
0: बोला
1: करें?
0: कि उसके बाद का बात आती है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट.
1: हाँ, वो कैसे करें?
0: पानी का बिल्कुल बगल में क्या है, देखिए 5 उंगली अगर आप देखते हो, किसी किसी का 6 उंगली होती है, अलग बात है, लेकिन कॉमनली 5 उंगली होती है.
1: बिल्कुल.
0: 5 उंगली अगर हथेली देखेंगे, सबसे अगर आप देखो तो छोटा उंगली आती है. छोटा उंगली दैट इज जल तत्व है, पांच तत्व का. सेकेंड आता है भू तत्व है, दैट इज भू तत्व इन द सेंस के लैंड रिलेटेड होता है, दैट मीन्स जंगल लैंड पूरा हो गया, यानी कि अर्थ, अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं उसको. उसके हिसाब से देखा जाए हमें सिर्फ 12% हमारे बॉडी में सिर्फ 12% खाना देना है, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट. हमारा शरीर के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, करीबन करीबन 70 न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है डेली की, रोज का, क्योंकि हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, मसल्स एक्टिविटी करते, वजन उठाते हैं, इधर उधर घूमते हैं. हर एक के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है. ये जो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, खाना खाने से मिलती है. सनलाइट इज वन न्यूट्रिशन, पानी एक न्यूट्रिशन है, हवा भी एक न्यूट्रिशन है. उसके अलावा भी हमको 67 न्यूट्रिशन और देना है हमें. जिंक आता है, गोल्ड आता है,
1: जी
0: ओके, ये हर एक आयन आता है, प्रोटीन्स आते हैं, हर वो चीज़, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के हर वो चीज़ हमको देना होता है. ये पूरा न्यूट्रिशन हम खाने में हमको मिलता है. वो खाना कैसे होना चाहिए, रॉ खाना होता है, कुकड होता है,
1: जी
0: फ्राइड होता है, इन चीज़ों में. तो पानी तो हम पी लिया है, सनलाइट तो हमको मिल लिया, बाकी जो चीज़ों को उसको डिवाइड करके हमें खाना है. ये खाने का पद्धति हमको समझ में आना चाहिए. ये खाना हम सब एक साथ में मिलकर खा लेते हैं. अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाके थाली ऑर्डर देते हो, उसके अंदर रॉ भी आता है, फ्राइड भी आता है, कुकड भी आता है,
1: जी
0: सब
1: जी
0: कुछ आ जाता है, हम पूरा मिला देते हैं. एक्चुअली खाना खाने का तरीका क्या है, आपको 3 खाना साथ में नहीं खाना चाहिए.
1: जी जी
0: 3 खाना कभी साथ में नहीं खाना चाहिए. कौन सा 3 खाना नहीं साथ में खाना चाहिए?
1: जी
0: कुकड,
1: हाँ, कच्चा.
0: फ्राइड
1: अच्छा,
0: और रॉ,
1: ओ
0: यानी कि कच्चा, पका हुआ और फ्राई किया हुआ. ये
1: हाँ,
0: तीनों को एक साथ में नहीं खाना चाहिए, ये
1: अच्छा.
0: अलग अलग खाना चाहिए. से आप जो भी रॉ खाते हो, वो रॉ जो होता है पेट में जाने के बाद वो 20-25 मिनट रहता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. आपका 20 मिनट में पेट खाली हो जाता है. बोलते हैं ना पेट खाली है, तो पेट, अभी डॉक्टर बोलते ना कि ये दवाई लेने का, खाली पेट लेने का, या दवाई लेने का, यानी कि खाना
1: जी
0: खाने के बाद खाने का, पेट यहाँ पर होता है, पूरा पेट नहीं होता है. स्टमक तो इतना ही छोटा, हमारा एक मुट्ठी के बराबर स्टमक होता है, उसके अंदर एसिड्स होते हैं, जूसेस होते हैं. तो हम जो रॉ खाते हैं वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता है. इसके लिए पहले आपको सैलड्स या फ्रूट्स या जो भी है, रॉ जो होता है, आप खाने के बाद फिर आधा घंटे के बाद आप कुकड या फ्राइड खा सकते हैं.
1: अच्छा.
0: सो फ्राइड अगर आप खाते हो तो उसका गुण अलग हो जाता है, और कुकड यानी कि बॉयल्ड जो खाते हो उसका न्यूट्रिशन अलग हो जाता है. कुकड जो होता है उसका न्यूट्रिशन, और फ्राइड नेगेटिव न्यूट्रिशन, और रॉ जो ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा है वो अभी वो काम कर रहा है. उससे पहले हमने सब तीनों मिला देंगे तो उसमें से जो हमको जो पॉजिटिव न्यूट्रिशन जो शरीर को चाहिए था वो हमें नहीं मिला, वो कचरे में चले जाता है, गोडाउन में चले जाता है.
1: ओहो
0: क्योंकि गोडाउन की तरह हमारे शरीर में, दुनिया भर बहुत सारे गोडाउन है हमारे शरीर में. तो जो जाना चाहिए था, आंख के लिए जाना चाहिए था, नाक के लिए, कान के लिए, मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए, पूरा न्यूट्रिशन हमें दिया था जरूर, मगर पहुंचा गलत जगह पर, बिकॉज हमने सही तरीके से नहीं आया. यानी कि चिट्ठी तो लिखा हमने मगर एड्रेस ही नहीं लिखा. तो क्या हो गया, इतना मेहनत करके चिट्ठी लिखा मगर आपने एड्रेस ठीक से नहीं
1: पहुंचा
0: लिया,
1: नहीं.
0: तो पहुंचा ही नहीं. सो ये जो
1: बिल्कुल.
0: खाना जो हमको खाना है, सही तरीके से खाना है, और दूसरी बात है कि चबा के खाना है. खाना आधा घंटे तक खाना है. आराम से कोई भी चीज को आप

0: 15-20 बार चबाना जरूरी है, मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होकर के अंदर जाएगा, तब जाकर के पूरा बॉडी काम करने लगेगा, नहीं तो आपको न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा नहीं है, तो माल फंक्शन करेगा बॉडी, जब माल फंक्शन बॉडी करेगा तो नेचुरली इरिटेटेड रहेंगे, गुस्सा करेंगे और लेथार्जिक रहेंगे, काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। काम तो किया आपने, मगर वो मन से काम नहीं किया, उसको जो मार्क मिलना चाहिए था नहीं मिला, आपने पूरा मेहनत किया था, 99% आना जरूरी था, मगर मुश्किल में 72% 50% आता है, क्योंकि आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, बिकॉज आपका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही नहीं था। इसके लिए खाना आपको सही तरीके से खाना है, चबा के खाना है, सलाइवा के साथ मिक्स करके आपको खाना है। दैट मीन्स मैं दो चीज़ बोलता हूँ कि आपको प्यास नहीं लगना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए और नींद नहीं आना चाहिए, ये तीन चीज आपको नहीं आना चाहिए, अगर आता है दैट मीन्स आप बीमार है। तो एक मेरा जो आंसर आपको अटपटा लगा, नहीं लगा आपको?
1: अगर आपने नींद पूरी है तो नींद क्यों आएगी?
0: देखिए बस यही तो बात है आपको, अगर आपको नींद आ रहा है, आपको अगर भूख लग रही है, दैट मीन्स आपको खाना खाना जरूरी था, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आपको हर 3-4 घंटे में कुछ तो एनर्जी देना था, आपने 3-4-5 घंटे तक कुछ खाया नहीं तो नेचुरल आपको भूख लगेगी, फिर जाकर के आप हॉकिंग करेंगे यानी कि ज्यादा खाएंगे और उल्टा सीधा खाएंगे, जो कुछ भी मिलता हो खा जाएंगे। अगर आपने कैलकुलेटेड तरीके से खाना खा लिया तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज आपको खाना देना जरूरी है। आप सोचेंगे मुझे भूख नहीं लगती इसके लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, वो गलत होगा। शरीर मांग रहा है लेकिन कुछ कारणवश आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी भूख तो आपको लगेगा, शरीर को लग रहा है, मगर आपको ब्रेन में वो सिग्नल नहीं मिल रहा है।
1: जी जी जी,
0: वो न्यूट्रिशन तो मांग रहा है वो तो, लेकिन इसके लिए बोलता भूख आपको नहीं लगना चाहिए, आपको खाना देना जरूरी है, प्यास नहीं लगना चाहिए, आपको हर आधा घंटे में पानी पीना जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: नींद नहीं आना चाहिए, मगर आपको सोना जरूरी है। आप सो जाएंगे तो नींद नहीं आएगी आपको, नींद आना मतलब बीमारी है, क्योंकि आपको आंख जल रही है फिर भी ड्राइव कर रहे हो, आपको नींद आ रही है फिर भी आप पिक्चर देख रहे हो, नींद आ रही है आप फिर भी काम कर रहे हो, तो वो काम में एनर्जी नहीं रहेगी, 100% तो नहीं दे पाएंगे,
1: क्वालिटी नहीं मिलेगी,
0: नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको सोना जरूरी है, वो 8 घंटे अगर आपने सो लिया ना पूरे दिन में नींद आपको आएगी नहीं, फिर आपने पूरा बाकी फॉर्मूला पूरा कर लिया तो आपको 8-9 बजे तो नींद आप सो ही जाएंगे, नींद आना ही नहीं चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका, खाना हो गया आपका, नींद 8 घंटा सोना जरूरी है, फिर आता है ब्रेथ लेने का तरीका होता है, श्वास आप कैसा लेते हो
1: जी,
0: दैट इज व्हाट श्वास लेने को आजकल हम श्वास लेते ही नहीं ठीक से, कुछ लोग श्वास लेना ही भूल जाते, उनको आइडिया नहीं कि वो श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, नहीं मालूम है। बिना श्वास का इंसान 1 मिनट भी जीना मुश्किल हो जाता है, आप पानी के बिना 2 महीना जी सकते हो।
1: तो कैसे फोकस करें?
0: तो ये जो श्वास लेने का फोकस कैसा होता है कि ये तो आपको बहुत सिंपल, जब हम पैदा होते हैं बच्चों को कोई सिखाया नहीं जाता है, बच्चा सही तरीके से श्वास लेता है जब पेट से बच्चा बाहर आता है, आप देखो तो उसका जब श्वास लेता है तो उसका पेट ऊपर आता है, आगे जा करके हमारा पेट श्वास लेता है पेट अंदर चले जाता है, हम पेट अंदर लेते हैं छाती को बाहर निकालते हैं श्वास लेने के लिए, पेट अंदर चले जाता है श्वास लेते हो, तो एक्चुअली गलत होता है। श्वास लेने का वो छोटा बच्चा आपको सिखाएगा, पेट से बाहर आया बच्चा है ना वो सिखा देगा, उसको आप ऑब्जर्व करो, वो श्वास ले रहा है तो पेट उसका ऊपर हो रहा
1: है,
0: हाँ, तो हमको डीप ब्रीथिंग करना जरूरी। एक बार श्वास लेना शुरू करेंगे तो पूरा दुनिया समझ जाएगा इंसान, वो कैसा होता है कि श्वास जब लेते हो तो नाक से जाता है तो क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, आप एक क्वेश्चन मार्क हम छोटा सा लिखते हैं तो छोटा सा लिखते हैं ऐसा, वही चीज़ आप 1 फुट का क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो कैसा लिखते हो, एक ऐसा लिख कर एक क्वेश्चन मार्क हम ले लेते हैं, ऐसे हमको श्वास लेना है, 1 फुट का श्वास लेना है, नाक से श्वास गया मस्तिष्क होकर के वो सीधा लंग्स तक पहुँचाना जरूरी है, ये हर श्वास यहां तक पहुंचना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, श्वास 1/2 इंच का लेते हैं, 1 इंच का लेते हैं, 2 इंच का लेते हैं, हमको 12 इंच तक का श्वास खींचना है।
1: जी जी
0: हाँ, तब जाकर के हमको दुनिया समझ में आती है। अगर हम आधा श्वास लेते हैं तो हमको दुनिया या सामने के लोग या हम बच्चे भी समझ में नहीं आएंगे, हमारा माँ बाप भी हमको समझ में नहीं आएंगे, हमारा गुरु भी समझ में नहीं आएंगे
1: जी।
0: और हमारा बॉस भी समझ में नहीं आएंगे और हमारा काम भी समझ में नहीं आएगा, क्यों? हम श्वास अच्छे से नहीं लेते। आप अच्छे से श्वास लेके देखिए तो आपको हर वो चीज समझ में आ जाएगा, आप भी हैप्पी रहेंगे, अचानक आप में एक एनर्जी आने लगती है कि हाँ यार मुझे ये भी आता है, हाँ मुझे वो भी आता है, ये तो मैं बहुत और भी अच्छा कर सकता था। इसके लिए जो ट्रेनिंग में श्वास का क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा श्वास लेना है और पूरा श्वास छोड़ना है, जितना आप इनहेल ले करते हो और उतना आपका ऑक्सीजन इनटेक होता है उतना आपका ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जितना ब्लड सेल्स एक्टिवेट होता है उतना हमारा शरीर चुस्त रहेगा और मस्त रहेगा, कभी भी कोई बीमारी आपको आसपास में नहीं भटकेगा। इसके लिए बोलते हैं कि श्वास लेना क्रिया बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना चाहिए, सो द ब्रीथिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और श्वास को कुछ लोग रोकते हैं, श्वास को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है आप कुछ कंपटीशन कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, उस वक्त श्वास लेकर

0: के 5 सेकंड रुक करके फिर श्वास छोड़ना होता है। आप कुछ काम कर रहे हो उस वक्त श्वास नाक से लेना है, नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है। जैसे हम फूंक मारते हैं, जो नाक और मुंह से श्वास, थके हुए हैं तो नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है
1: जी,
0: लेना है सिर्फ नाक से और आराम से लेना है, ये कभी नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: हाँ, जल्दी जल्दी श्वास लेते वो नहीं करना
1: वो तो
0: चाहिए,
1: बहुत सारे लोग ऐसे उसमें
0: नहीं करना चाहिए वो।
1: करते
0: हाँ, परीक्षण जैसा कपालभाति हम करते हैं,
1: हाँ।
0: जो अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं, वो नोस्ट्रल क्लीन करने के लिए ठीक है,
1: लेकिन अमूमन नहीं
0: नहीं
1: लेना।
0: करना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करना चाहिए। जानवर को कभी आपने देखे नहीं हो, वो भी हमारे साथ ही पैदा हुए, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे, तो वो तो कभी अनुलोम विलोम नहीं करते, वो तो कभी कपालभाति नहीं करते, वो तो कभी योगा नहीं करते, फिर भी अच्छा जी लेते। तो मैटर ये बनता है, हम यानी ह्यूमंस थोड़ा एडवांस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बट योगिक क्रिया इज अलग है। जब योग परीक्षक जो होते हैं वो सिखाते हैं, वो अलग चीज़ होता है, बिकॉज आपका सिस्टम और एनहांस कर देते हैं उसके अंदर, और आपको अच्छे से जीने का कला आ जाता है। इसके लिए अच्छे से इंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप सीखेंगे, आपको पूरा जिसके पास नॉलेज है उनके अंडर में सीखना जरूरी होता है, कुछ भी करना नहीं होता है। तो ब्रीथिंग इज ए वेरी सिंपल टेक्निक, श्वास अच्छे से अंदर लेना है, श्वास अच्छे से आपको बाहर छोड़ना जरूरी है। तब जा करके 4 पॉइंट होता है, यानी कि आपको पानी पीने के लिए आना चाहिए, खाना खाना आना चाहिए, नींद सही तरीके से आना चाहिए,
1: सांस।
0: सांस अच्छे से लेने आना चाहिए, तो 4 हो गया, प्लस 1 परिश्रम, वो इज इक्वल टू करेंगे तो 100 साल की जिंदगी आपका सही है। और
1: अच्छा।
0: कोई चीज़ तो है ही नहीं है, कुदरत ने तो एक ही चीज़ बोला कि भाई आपको ये शरीर मैं दे रहा हूँ एज ए बाड़े के तौर पर, मुझे इतना देना है आपको रिटर्न में। रिटर्न में क्या देना है? पानी, खाना, नींद, हवा और मेहनत। अब मेहनत कैसा करना है? मेहनत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत परिश्रम, जो सिर्फ 4% देना है, 4% मेहनत देना है। तो 4% में क्या क्या आएगा? आप थोड़ा सा झुकेंगे, आपका जो कोणी, जो एल्बो जो होते हैं ना, ये कान से ऊपर जाना चाहिए कम से
1: अच्छा।
0: कम दिन में 100 बार, कोई भी हालत में। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई डब्बा ऊपर रख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे
1: चलिए।
0: हो, कहे थोड़ा एक बार ऐसा कर लिया, एक बार ऐसा कर लिया, हो गया, 2 हो गया, फिर घर में थोड़ा अंगड़ाई लिया 2-3 बार, 5-6 काउंट में हो गया। कभी हाथ, कोई भी कारण आपको उठाते रहना चाहिए, तो भी आपका शोल्डर अच्छा हो जाएगा। थोड़ा नेक को मोमेंटम देना है अच्छे से, एक बजे वो बजे देखना है, ये बजे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है,
1: जी।
0: आपका C1 C2 या पर सर्वाइकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा इधर से कुछ गिरा उठा लिया, इधर से गिरा कुछ उठा लिया, या अगर जैसे झाड़ू पोछा कटका लगाते हैं हम घर में, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाता है। कुछ वजन उठा करके ऊपर रख दिया, कुछ ऊपर से लेके नीचे रख दिया, या आप थोड़ा सा चल लिए। हम 1 ही घंटा चलते हैं, सिर्फ चलना एक्सरसाइज नहीं, चलना तो एक इंग्रेडिएंट है। आप एक पाव भाजी बना रहे हैं, उसके अंदर 50 मसाला डाल रहे हैं, तो वॉक एक मसाला है, अभी भी 25 मसाला बाकी रहता है। तो उसमें एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग्स, उठक बैठक, वजन उठाना रखना, ये पूरा करना जरूरी है। इसके लिए कैलकुलेटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम वेलनेस मैनेजमेंट में आता है कि कितना वजन उठाना चाहिए, कितना वजन रखना चाहिए, कैसा उठाना चाहिए, कैसा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, ये पूरा थोड़ा बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। कुछ माहौल बनता है, एरिया बनता है, इसके लिए एक जगह जाकर के सीखने से अच्छा लगता है। आप
1: बिल्कुल।
0: घर में भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, यानी कि 4% आपको मेहनत तो करना है, जैसे कुएं से पानी निकालना, पेड़ चढ़ना, ओके, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नारियल पानी पीना है तो फिर आप पेड़ भी चढ़ना जरूरी होता है,
1: क्या बात
0: ओके, नहीं
1: है।
0: तो आप पानी पीने के लायक ही नहीं है, क्योंकि
1: जी
0: कुदरत ये बोलता है। लेकिन
1: हाँ।
0: ऐसा नहीं कि हर कोई पेड़ तो नहीं चढ़ सकते हैं, टेक्निक तो हम तो आता नहीं है, फिर भी नारियल पानी तो पीना है, पीना है तो ठीक है, आप 1 किलो चल के आकर के फिर पानी पियो। आप गाड़ी पे आए, गाड़ी से नीचे उतरेंगे नहीं, बैठे बैठे अपना नारियल पिया और निकल गया, तो वो कोई काम का नहीं हो, तो वो अंदर जाकर के गैस ही करेगा। तो इसका मतलब आप आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए, चल के आए, क्या एक नारियल पानी पीते हो, वो उसका काम करेगा।
1: फायदा है
0: दैट
1: बिल्कुल।
0: मीन्स क्या है कि मेहनत के सामने आपको उसका रिजल्ट आता है।
1: जी
0: आप
1: जी
0: मेहनत नहीं करेंगे, फिर भी आप खाते जाएंगे, पीते जाएंगे, तो फिर आपको रिजल्ट आने वाला नहीं। इसके लिए मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4 + 1 = 100, 100 साल की जिंदगी पूरा होता है। सो
1: जी
0: दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये अगर इंसान समझ गया तो कभी भी उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल। आप डॉक्टर साहब 100 साल की जिंदगी की बात कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि वृद्धावस्था में भी युवा रहा जा सकता है, वो क्या नुस्खा है जरा बताइए, क्योंकि अभी तो कंपटीशन सा बना हुआ है कि हम कैसे लंबे समय तक युवा बने रहें। और देखने में तो सभी को लगता है कि आज तो सेल्फी का जमाना है,
0: जी,
1: तो सभी चाहते हैं कि युवा बने, सेल्फी लें, तो बताइए ये जरा नुस्खे बताइए हमारे
0: तो एक
1: श्रोताओं
0: तो मैं
1: को।
0: आपके सामने बैठा हूँ, तो आपने मेरा तो एज तो आपने देख
1: जी
0: लिया। मैं ट्रेन में भी अगर आता हूँ तो मुझे सीनियर सिटीजन का दर्जा है,
1: जी
0: फिर भी मुझे अगर वो जगह मुझे मिली है, तो 40-50 साल के जो
1: हाँ
0: होते हैं, जो वृद्धावस्था में दिखते हैं, वो हमारी तरफ देख करके गुस्सा करते हैं, आप इतने यंग है तो आप सीनियर सिटीजन में कैसे।

0: झूठ बोल रहे हैं
1: ओके, तो ये हमने बहुत फेस किया हुआ है। तो रियलिटी है कि भाई आपको यंग एट हार्ट, एज इज जस्ट अ नंबर, वो एक नंबर होता है। आप इतने साल के हो, इतना साल पैदा होकर के मेरे इतना साल हो गया, मगर वो दिखना जरूरी नहीं। बुढ़ापा ए बीमारी बोलते हैं हम इसको, बुढ़ापा नहीं चाहिए हमें। उम्र भले उनका 90 साल क्यों ना हो, अब यू शुड लुक एंड यू शुड लिव यंग। वो कैसा पॉसिबल है, यही फार्मूला। ये फॉर्मूला कैसा है, आपको हर आधे घंटे में पानी पीना है। देखिए कितना भी आप मेरे को क्वेश्चन करेंगे, हम घूम फिर के वहीं पर ही आते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक बात होती है कि पानी हर आधे घंटे में इंसान को पीना है, प्यास लगे या नहीं लगे, हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए। और खाना तीन साथ में नहीं खाना चाहिए, कौन सा, रॉ, कुक्ड और फ्राइड, ये तीनों एक साथ में नहीं खाना चाहिए। फिर आता है नींद, 24 घंटे में एक ही बार सोना चाहिए, रात को 9-10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो उसके बाद आपके पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही दुनिया का रिच इंसान बन जाएंगे आप, हेल्थ वाइज और फाइनेंस वाइज, बिकॉज आपके पास एडवांस टाइम रहता है। नहीं तो लेट उठ के भाग दौड़ करते हैं, उसके बाद पूरा दिन उनका बहुत खराब जाता है। इसके लिए जल्दी सोने का अगर प्रैक्टिस कर लिया, आप दिया तो 24 घंटा ही है, आप 12 बजे सोते हैं फिर लेट उठते, वो नहीं, आप वही चीज़ को जल्दी जल्दी करो, 2 घंटा एडवांस रहो, तो आपका वो सर्कल आप अच्छे से, यानी कि अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है। नींद है आपका बेस है, पूंजी बोलते हैं उसको, FD बोलते हैं हम अपना भाषा में, नींद आपका FD है, उससे इंटरेस्ट मिलती है, उससे इंटरेस्ट से आपका 16 घंटा चलता है। अगर आपने अपना FD तोड़ दिया, मान लीजिए कि आपका नींद 1 लाख रुपया का है, तो आपका FD है, आपने उसमें से 50,000 खर्चा कर लिया आपने, उसका इंटरेस्ट जो आता है कम आता है, आपका 16 घंटा नहीं चलेगा, आप समझे ना। तो क्या होता है कि भाई FD को तोड़ना नहीं है, FD को फिक्स रखो आप, उसको और अच्छे से उसको एनहांस करो, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे हमें जीना है, तो हमको FD को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो ये जो स्लीप को ज्यादा छेड़ना नहीं हमें, 16 घंटा का हमारा जो पिरामिड बनता है, 8 घंटा हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस हेल्थ एंड उसका जो होता है ना, दैट इज अ स्लीप बनता है। वो जो 8 घंटे का स्लीप के ऊपर आपका पिरामिड बना हुआ है, दैट मीन्स 8 आवर्स का 16 घंटा डिवाइड होता है, जो वो जो 16 घंटा जो बैठा है आपका 8 घंटे का नींद पर। सो वो नींद आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये पिरामिड बहुत अच्छा बन जाता है, हेल्थ, हैप्पीनेस और होप बोलते हैं। आप सुबह उठेंगे वो फुली उठेंगे, आप जैसे उठते हो तो आप कुदरत को शुक्रिया अदा बोलो उठाने के लिए, और 16 घंटा अगर आपका अच्छा गया है तो रात को वापस थैंक यू बोल के सो जाओ कि आज का दिन मेरा 16 घंटा बहुत अच्छे से गया। यानी कि इंसान को जीना है सिर्फ 16 घंटा, 8 घंटा आपको नींद पे निकालना है। तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है, उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है अपने को।
0: बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और डॉक्टर राज, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी बातों से बहुत सारे लोग इस समय प्रेरित हो रहे होंगे, तो आपने कौन सी डिग्री हासिल की है? अगर हमारे श्रोता भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने को फिट फाट रखना चाहते हैं, तो क्या पढ़ाई करें और किस तरह से आए?
1: देखिए पढ़ाई तो नॉर्मल रूटीन में होता है कि कोई अनपढ़ भी होना जो भी वो फिटनेस एक्सपर्ट बन सकता है, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम आता है।
0: लेकिन आपने PhD?
1: मैंने PhD किया अल्टरनेटिव मेडिसिन में, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैंने वेलनेस में किया हुआ है, जो अपोलो हॉस्पिटल होता है वो ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा भी हमने बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे जो कैंप्स होते हैं, जो 1 मंथ का होता है, 2 मंथ्स का होता है, जो छोटे छोटे जो होता है, जो एक्सपर्ट्स के अंडर शारीरिक तौर पर किसी और का काम करते हैं, तो आपके पास वो आवड़त जिसको बोलते हैं ना, जो आपका वो आना जरूरी है, यू हैव टू बी एक्सपर्ट। तो इसके लिए हमको आयर जो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले से आपको सीखना ज़रूरी होता है। फिर भी इसका डिग्रीज होते हैं, आपको जब वेलनेस होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, क्योंकि उसके अलावा योग परीक्षण केंद्र होता है बहुत जगह पर है, जैसे बेंगलुरु में विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत जगह पर कॉलेजेस पूरा खुली हुई है, नेट में बहुत सारा मिल जाता है, इंटरनेशनल वेलनेस भी होता है
0: जी।
1: बहुत जगह पर वेलनेस में ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो मिलता है आपको, यूनिवर्सिटीज उसका डिग्रीज देती है
0: जी।
1: योगा डिग्री भी होता है
0: जी।
1: तो कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील
0: जी,
1: बट पैशन होना जरूरी है।
0: हाँ।
1: सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होता है, आपको पैशन होना जरूरी है। इसके लिए मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो मैं बचपन से हूँ, मैं 12 साल का था, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ।
0: अच्छा।
1: तो आज मेरा 63 ईयर्स, आज की तारीख में भी मैं क्लासेस लेता हूँ, मेरा सूरत में क्लासेस चलती है, आयु फिटनेस वेलनेस मैनेजमेंट करके मेरा ऑर्गेनाइजेशन है WAYU। तो इसमें हमारा डेली रूटीन चलता है, उसके अलावा भी ऑनलाइन में भी मैं परीक्षण करता हूँ, तो हम एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं
0: जी, जी।
1: तो ये बात भी है
0: जी। तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो जुड़ना चाहेंगे आपसे जुड़ भी सकते हैं और ऐसी कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब छोटे छोटे, बहुत संक्षेप में आप बताइए, कुछ छोटे सवाल छोटे जवाब
1: जी।
0: तो हम सब तो आवाज

0: की दुनिया में काम करते हैं, तो जो आवास की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए पानी कितना और कैसे पीना चाहिए, बहुत संक्षेप में बताइए।
1: जी, एक तो पहली बात तो माइक्रोफोन जो होता है ये आपका मॉइस्चर को खींचता है, ये जो माइक्रोफोन, ओके, तो फिर नेचुरली आपके पास तो पानी होना जरूरी है, और पानी को डायरेक्ट नहीं पीना है, पानी मुंह में रखना है। रखने के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड रखने के बाद वो पानी को टिप्पा टिप्पा निकलना है, एक साथ में गल्प नहीं करना है, और पॉइंट वाइज आपको निकलना है, कि गला मॉइस्चर रखना है ऑल द टाइम, ये तो मॉइस्चर रखना है। दूसरा क्या होता है कि गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं हल्दी, और थोड़ा सा प्योर घी अथवा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डाल के आपको गले में रखना है। रखने के बाद
0: ये
1: उसको
0: पानी में या दूध में?
1: पानी में,
0: ओके।
1: सिर्फ पानी में उसको रख के थोड़ा सा आप अंदर डालेंगे तो क्या होता है कि आपका ये गला मॉइस्चर रहेगा, और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो हील हो जाएगा। और उसके अलावा भी छोटी छोटी काम, और जैसे कि आकार का बोलना जरूरी होता है, दैट इज अ नॉर्मल रूटीन, आकार उकार मकार में आकार जो होता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अच्छा।
1: गल्प करते रहना चाहिए,
0: हाँ।
1: बार बार आपको मुंह में सलाइवा लाना है, ऐसा टंग से मुंह में रोल करने के बाद मुंह में सलाइवा आता है,
0: ओके।
1: सलाइवा को गल्प करना चाहिए, गल्प करो, ये बिल्कुल मॉइस्चर हो जाएगा, वापस फ्री हो जाएगा आपका गला।
0: क्या बात है भाई। तो जो लोग वॉइसिंग डबिंग में काम करते
1: उनके लिए
0: हैं
1: बहुत
0: उनके
1: इंपॉर्टेंट
0: लिए बड़ी
1: चीज़
0: कारगर बात बताई।
1: है।
0: तो ये आपने बताया कि अकार, तो अकार कितने सेकंड करना चाहिए, और मकार क्या है वो, क्या बताया?
1: अकार उकार मकार से ओमकार बनी हुई है, ओमकार इज नॉट ओ एम, इट इज आ ओ मा, ये यू एम, अकार उकार मकार होता है, तो वो बोलने का तरीका होता है जब आप मकार डालते हो तो आपका जो टंग जो है ना ऊपर पैलेट पर टच होना चाहिए, बाकी कुदरत ने दिया हुआ साउंड है, आप अगर अंतरिक्ष का साउंड देखेंगे तो ओमकार ही आता है,
0: जी
1: बट
0: जी
1: वो ओम ओम नहीं है, वो यम नहीं, वो आ वो मा, आप बराबर कान डाल के सुनेंगे तो यही आवाज करेगा, यानी कि मुंह खुला उकार पे आ गया, मुंह बंद किया टंग ऊपर गया तो वो मकार पे आ जाता है,
0: जी।
1: तो ये मकार इस कुंभक होता है।
0: अभी हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि बिना किसी महंगे उपकरण के जिम जाने के अलावा घर पे बैठे बैठे वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं हमारे
1: देखिए
0: श्रोता, बहुत संक्षेप में बताइए।
1: देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी मिनरल वाटर बॉटल होता है वो 1-1 लीटर का दो, या उसमें पानी खाली करके उसके अंदर सैंड भर देने का होता है, 2 किलो का हो जाता है,
0: जी जी
1: आप सैंड भर देंगे, ऐसा 5-6 बॉटल रख देने का, 2 किलो का एक रखने का, 1 किलो का एक, आधा किलो का एक रखने का, कुछ नहीं खाली उसको उठा करके नीचे रखना होता है,
0: उससे हाथ की एक्सरसाइज हो
1: एक्सरसाइज
0: गई।
1: हो जाती है।
0: जी
1: ओके, आप वो ले करके उठक बैठक कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम ऐसा है, आप कोई भी यूट्यूब में या फिर कोई भी डाल दो तो आपको आप 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का एक्सरसाइज तो दिखाई देते हैं, फिर भी हर एक को पुशअप्स आना चाहिए, स्क्वाट करना आना चाहिए, अपराइजिंग यानी कि दोनों हाथ को सर के ऊपर लेकर के आसमान की तरफ अपने आप को खींचना चाहिए, दिन में
0: जी
1: 25-50 बार ऐसा करते रहेंगे सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और रही शावर लेने की लोगों को बहुत आदत है, शावर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए, आप बैठ के नहाना चाहिए, बाल्टी से
0: बाल्टी
1: पानी
0: से।
1: लेकर के नहाना सबसे अच्छा होता है, खड़े खड़े जो नहाते हैं ना वो सही नहीं होता है, और रोज साबुन लगाने की जरूरत नहीं होती है,
0: जी।
1: साबुन आपको वीक में एक या दो ही बार लगाना होता है, और सिर्फ हाथ में हथेली, लोग बहुत साबुन लगाते हैं, बहुत शैम्पू लगाते हैं, बहुत कंडीशनर लगाते हैं, नेसेसिटी नहीं होती है, स्किन का मॉइस्चर भी निकल जाता है उससे,
0: जी
1: बहुत ज्यादा क्रीम्स वगैरह जो लगाते हैं वो भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि वो खून चूस लेता है, यानी कि अंदर चले जाता है,
0: जी
1: तो जो कुछ भी हम खा सकते हैं, जो हम खाते हैं वो हमको स्किन में लगाना है, आप जो चीज़ नहीं खाते हैं वो स्किन में लगाएंगे वो क्या होगा, वो सीधा पोर्स के अंदर जा करके ब्लड के साथ अंदर जाकर इंटरफेयर करता है, तो
0: जी
1: इसलिए पर छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी है।
0: और फिटनेस के जरिए क्या दर्द में भी राहत मिल सकती है? बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती
1: जी
0: हैं
1: नी का
0: तो।
1: इश्यूज है बहुत लोगों को, एंकल का इश्यूज है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, रिहेबिलिटेशन हम करते हैं जिनको जो तकलीफ है, स्लीप एपनिया होता है या फिर अल्जाइमर होता है या फिर बहुत सारे ऐसे जो तकलीफ से ये करते हैं कि उनके लिए वो आते हैं तो एक्सरसाइज उनके हिसाब से होता है, सो बैठे बैठे पाँव को थोड़ा सा लंबा करना
0: जी
1: या फिर नेक का एक्सरसाइज करना, इन चीज़ों से बहुत उनको इजाज़त मिल जाती है, यानी
0: जी
1: कि सही तरीके से वेलनेस मैनेजमेंट में आते हैं सीखते हैं तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है। मेरे पास दिन में 100 जन आते हैं
0: जी
1: और सभी बाहर गांव से भी आते हैं, वो बहुत अच्छे होके जाते हैं, 2-3-4 दिन का उनका रूटीन होता है, 1 दिन का रूटीन होता है, वही 2-3 घंटे भी आके सीख के जाते तो उनको रिजल्ट मिलता मिलता मिलता ही है।
0: जी
1: जी
0: बढ़िया बात। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, और बस एक लाइन में हमें जवाब दीजिए, वो ये कि 5 तत्व की आपने बात की, जहाँ वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, तो ये 5 तत्वों के माध्यम से आज की आधुनिक जीवन शैली में इनका कितना महत्व है और क्या संभव है ये?
1: नहीं आधुनिक बोलिए या कोई भी एंशंट, यानी कि माँ तो माँ ही होती है, माँ का गर्भ से अगर आए

0: तो इसमें आधुनिक भी नहीं चलता है या
1: जी
0: फिर ये भी नहीं चलता, माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: मतलब
0: माँ तो ये बनता है कि आप कितना भी बड़े क्यों ना हो, आप 100 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, ओके, आप उससे नीचे ही रहेंगे। बट हमें कुदरत ने हमको दिया है तो एज ए चैलेंज आप उसको करके जाओ, नहीं तो हमको वापस आना पड़ेगा, ओके, फिर हमको अच्छा शरीर नहीं मिलेगा।
1: जी
0: कितना योनि पसार होने के बाद हमको ये शरीर मिला, अच्छा शरीर मिला है तो उसे अच्छे से जी के जाना है, अपने को दुनिया को कुछ दे के जाना है,
1: जी
0: समझा के जाना है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है।
1: जी
0: हर दिन आप अच्छे से जी लो तो आपके पास सब कुछ मिल जाता है। तो रियलिटी ये है कि भाई आधुनिक या युग हो या कोई भी युग में, आपको अच्छे जीने के लिए पांच तत्वों से अगर आए हैं तो आपको पांच तत्वों का जो नियम है, कानून है, वो कानून के हिसाब से जीना पड़ेगा।
1: जी
0: दैट मीन्स हर आधे घंटे में पानी पीना है, हर 3-4 घंटे में खाना खाना है, 8 घंटे का नींद करना है,
1: जी
0: और 1 मिनट में 10 से 15 बार श्वास अंदर बाहर लेना है, और दिन में कम से कम आपको आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक परिश्रम करना है, जिसमें आपको थोड़ा कैलोरी बर्न हो, दिन में 2-3 हज़ार कैलोरी बर्न हो जाए, उतना नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, कम से कम 800-900 कैलोरी बर्न करने की कोशिश करना चाहिए, जिंदगी अच्छे से निभा सकते
1: जी
0: हैं।
1: डॉक्टर राज, आपने पूरे प्रोग्राम के दौरान इतनी बार पानी पीने के लिए कहा है और इतने सही तरीके से नींद प्रॉपर लेने के लिए कहा है, जो कि कम हो रही है नींद आजकल, और न्यूट्रिशन की ओर इतनी बार इशारा किया है, ध्यान देने को बोला है, तो हमारे श्रोता जरूर आज से सजग हो जाएंगे इस ओर। अब
0: थैंक
1: चलते
0: यू सर
1: चलते बताइए कि
0: जी
1: इसी में हम गाने को भी शामिल कर लेते हैं,
0: जी
1: संगीत भी एक माध्यम है जिससे सुकून मिलता है, कौन सा गाना आपकी ओर से हम नजर करें अपने श्रोताओं
0: देखिए,
1: को?
0: इस वक्त मुझे क्या आ रहा है, तो मैं बोला अच्छा जिंदगी जीना है, तो फिर एक गाना जो मेरा फेवरेट है, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात गम छोड़ के, गाने में बहुत एनर्जी है, और आई थिंक ये हेलन जी उसमें डांस किया,
1: मस्ती से
0: कोई
1: जीने की बात कही
0: जीने की
1: गई
0: बात है, तो वो गाना मेरा फेवरेट है ऑल द टाइम, सो आई थिंक श्रोता भी बहुत एंजॉय करेंगे इसे।
1: जी, सुनते हैं।

0: डॉक्टर राज, बहुत सारी जानकारी दी आपने, आपका तहे दिल से शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: थैंक यू वेरी मच कॉलिंग मी हियर एंड आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब अच्छा रहिए, ठीक रहिए एंड खुश रहिए, 100 साल जिंदगी पूरा कीजिए।
0: क्या बात,
1: खुशी खुशी।
0: शुक्रिया शुक्रिया, नमस्कार
1: नमस्कार।
2: ये थी वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM 88.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हाफ रंग केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों को,
3: यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त को और महान गजल सम्राट जगजीत सिंह को।

यह आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। इसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन ओपी नैयर की थी।

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल, फिल्म का गाना। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: और अब रवि का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम भरोसा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत श्री रामचंद्र का संगीत है। साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बहू रानी।

फिल्म बहुरानी का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। इसे शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन हेमंत कुमार की है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म जाल में सुना। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।

0: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल में अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, और ये फिल्म है अर्थ।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: ये आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत आपने सुना। स्वर जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे। फिल्म का नाम था साथ साथ।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर की रचना, जगजीत सिंह का संगीत, फिल्म का नाम है प्रेम गीत और स्वर जगजीत सिंह का ही है।

0: श्रोतो, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: श्री चौहान ने उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल, असम, पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत मिली है। इससे पहले राजस्थान और त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट है, देश का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
3: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी साझा करेंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी।

दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सोमवार को अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये खेल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विरासत संरक्षण और खेल के माध्यम से जन सहयोग को बढ़ावा देंगी। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पुरुषों का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिल से मेरे लहर उठे ठंडे पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनू उड़ते फिरूं मस्त गगन में।
1: लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चोरी चोरी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जय।

ये अंबर में सुरीले मधुर गीतों के साथ सैर करेंगे बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा मन भी कभी कभी उड़ान भरता है, यादों के पंख लगाकर बीते हुए दिनों में पहुंच जाता है, संगीत की धुनों के साथ अनजानी राहों पर निकल जाता है और सपनों के आसमान में विचरने लगता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, मन की उड़ान कभी थमती नहीं। आखिर पंछी हो या इंसान, उड़ान ही तो जीवन को नए अर्थ देती है और अपनी जड़ों की ओर लौटने का सुख उस उड़ान को पूर्णता देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सुंदर सी इबारत में इसमें प्रवासी पक्षियों की उड़ान, जीवन का सफर, अपनों से बिछड़ना, अपनी जड़ों की ओर लौटना और सपनों को पाने की चाह है। मेरे मायके के नजदीक सांभर झील में सर्दियों में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। फरवरी मार्च तक रुकते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रास्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और परिस्थितियां भी, पर उम्मीद का साथ नहीं छूटना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिंजरे में पंछी कमजोर हो जाता है, वही जब उसे आजाद कर दें तो वो आसमान को छू लेता है। शायद पिंजरे में बंद पंछी हमें यही कहता है, जो भी मैं मांगू क्या मुझको दे पाओगे। कैद में पंछी पूछ रहा, क्या खुला गगन दे पाओगे। जब बेड़ियां तुम्हें पसंद नहीं, फिर मुझको क्यों पकड़ा है। अपने स्वार्थ की खातिर मुझे क्यों पिंजरे में जकड़ा है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। आई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल, सुबीर सेन की आवाज और फिल्म का नाम है आस का पंछी। अच्छा बताइए, क्या आपने कोई पंछी पाला है? बताइएगा।

0: आसमां को बढ़कर राही तो रुक ना सकेगा, दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल मेरा एक आस का पंछी, यानी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे। वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सदाबहार गीत है जो आज भी श्रोताओं को ऊर्जा और खुशी से भर देता है, और ये गीत आजादी, उल्लास और बेफिक्री का एक खूबसूरत प्रतीक है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जीवन जीने और रोजगार की तलाश में अपनी उड़ान भरता है और सफल होता है, यही हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि मेरे पतिदेव ने भी मुझे आजाद होकर उड़ने की इजाजत दी है, क्योंकि मैं भी अपना बिजनेस करती हूं और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसी तरह हर एक को अपने जीवन साथी को आजादी देनी चाहिए, जो सही आजादी होती है उसे देना चाहिए, ताकि अपनी उड़ान हर इंसान भर सके। वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस गीत को पसंद किया है और लिखते हैं कि बात सही है, लेकिन जब सेवा में कार्यरत थे तब घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी के कारण मस्त गगन में उड़ने का मौका कम मिला। अब जब सेवा निवृत्त होने के बाद नौकरी से आजाद हुए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उड़ने का मन जरूर होता है, लेकिन पंख सिकोड़कर बैठ जाना पड़ता है, फिर भी मन को मजबूत बनाकर जरूर उड़ा जा सकता है। इस बात पर एक मुहावरा इन्होंने लिखा है, मन होए तो मालवे जवाई। ये गुजराती मुहावरा है, मतलब मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। रूबरू न सही विविध भारती की प्रसारण तरंग रूपी पंख लगाकर। बहुत सुंदर लिखा है, अपनी छोटी बहन यानी मैं के संग जब सुरीली उड़ान भरेंगे तब मेरे मन का बावरा पंछी बार बार जरूर डोलने लगेगा। बिल्कुल, इस वक्त आप मेरे साथ ही हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना? महसूस किया आपने? जी हाँ, हम अभी हवा में उड़ ही रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। अरे, इससे पहले तो गाना आपसे सवाल पूछना था, चलिए सवाल पूछती हूँ। हाँ, एक सवाल तो मैंने लगे हाथों पूछ ही लिया था यूं ही कि आपने कोई पंछी पाला है तो बताइए। हाँ, जो मेरे दो सवाल हमेशा रहते हैं, वो पहला सवाल ये है कि अगर आपको किसी भी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताइए, कहाँ जाना चाहेंगे उड़कर? और अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि क्यों जाना चाहेंगे वहाँ। सवाल फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपको भी किसी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? और हमारा दूसरा सवाल है कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, है ना, लेकिन क्या इंसान अपने मन में जो खींची हुई सीमाएं हैं उन्हें पार कर पाता है या नहीं? आपने अपने जीवन में, अपने मन में जो सीमाएं पाल ली है, सीमा रेखा खींच दी है, उसे आप पार कर पाते हैं कभी? बताइएगा। तो सवालों के जवाब का हम इंतजार करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहब।

हमारे श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब लिखा है। लिखते हैं कि हमें अगर उड़ने का मौका मिला तो हम यूरोप जाना चाहेंगे। अच्छा क्यों, ये तो आपने नहीं बताया, ये भी बताइए क्यों जाना चाहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि अगर हमको कभी उड़ने का मौका मिले तो मैं दूर से ये देखना चाहूंगा कि मेरी इस सफलता से कितने लोग खुश है और कितने दुखी। अरे आप फिर भी वो जो मानव का स्वभाव है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप ये देखना पसंद करेंगे कि भाई मैं उड़ रहा हूँ तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है मेरे इस उड़ान से। नहीं नहीं, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और निकल जाना है दूर, बहुत दूर, तभी तो मजा है उस उड़ान का, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रभात में पक्षियों की मधुर कलरव की मीठी मधुर आवाज से गगन पर विहार करते सुनाई देती है तो मीठी नींद से जागाती है। मैं हाल सूरत पर हूं, पर एक साल में 3 बार राजस्थान के हिंडौन सिटी के ग्रामीण इलाके में करीब 5 महीने रहा हूं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गांव में रहा। खेत खलिहानों में मोर मोरनिया पक्षी बहुत आते हैं। हम दाना पानी मीठी नमकीन चना बिछाकर रखते हैं तो कुछ देर बाद वो आते हैं। अपने आप मन हो तब दाना रोटी नमकीन खाते हैं और हम उन पक्षियों को खाते हुए मधुर आवाजों से करीबी से सुनते भी हैं और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा समय निकालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि बिहार में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और इनके ठहरने के लिए बिहार में कई प्रमुख आर्द्रभूमि झीलें और पक्षी अभयारण्य हैं। और आपने लिखा है जमुई जिला झाझा, ये बिहार का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ साइबेरिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। उदयपुर झील जहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है, राजगीर की पहाड़ियाँ, नालंदा जिला, राजगीर की पहाड़ियों और जंगल के यूरोप और मध्य एशिया से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। और पटना पुराना सचिवालय के पास जो है जलाशय, पटना शहर के भीतर स्थित इस जलाशय में ठंड के मौसम में विदेशी और प्रवासी पक्षी मेहमान के तौर पर आते हैं। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मध्य एशिया से विभिन्न प्रकार की बतखें और सारस प्रवास के लिए आते हैं। नागी नकटी जमुई, भीम बांध और पटना, इन प्रवासी पक्षियों को देखना बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है, जब एक साथ छुट्टियां होती हैं और एक्स्ट्रा छुट्टियां लेकर सपरिवार तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हम जाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा मन ही पंछी ही तो है जो सतत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाना चाहता है। बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मन बिना टिकट बिना किसी साधन के हजारों मीलों का सफर करेंगे सुरीली सफर के साथ। बिल्कुल, आज हम टिकट लेकर नहीं उड़ रहे हैं बल्कि बिना टिकट के इस यात्रा पर निकल चुके हैं, है ना। आप भी महसूस कर रहे हैं ना इस हवाई यात्रा को।

यह आवाजें थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था 9-2-11। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले विविध भारती का मुंबई और दिल्ली का जो विविध भारती स्टूडियो देखने की उड़ान वो भरेंगे। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने अपनी बात रखी है लेकिन कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। आप लिखते हैं कि थाईलैंड राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों के साथ 2 घंटे, बस इतना ही आपने लिखा है। शायद आप ये कहना चाहते हैं वहां पर आपने 2 घंटे बिताए, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 में 6th class में पढ़ते हुए जंगल से तोते का बच्चा लेकर आए। अभी उसके पंख भी नहीं आए थे, रुई के फाये से दूध पानी चोंच में डालकर उसको बड़ा किया और एक मराठी भाषी मित्र को दिया। उसने उसे मराठी सिखा दी। इकड़े आला कोठे जला, अच्छी मराठी बोलता था तोता। मैं बाहर चला गया, उनका भी तबादला हो गया और बाद में पता नहीं कि किसको दिया तोता। 20 साल बाद एक गली में उसकी आवाज़ पहचान दी और मराठी में बात की तो उसने भी जवाब देकर पहचान पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बताऊँ मैंने भी ऐसे ही एक तोता मैना पाले और तोता उड़ गया एक दिन। अब मैना उदास हो गई, मैंने फिर उसको भी उड़ा दिया। मुझे लगा कि शायद इतने दिन मेरे साथ रहे हैं तो वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन पंछियों से प्यार करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिल लगा बैठते हैं और फिर उनके उड़ान भरने के बाद हमें दुख भी होता है और शायद कई दिन तक ये दुख रहा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो जहां सपनों की उड़ान देखनी है उस यथार्थ को प्रवासी पंछियों की उड़ान जैसा दिखाया गया है, जो बड़ा लंबा रास्ता तय करके यहां तक पहुंचते हैं और फिर अपने जन्म स्थान को मौसम अनुकूल होने के बाद लौट जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी

बच्चों का आवागमन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ज्ञान या विवेक किताबों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है। प्रवासी पक्षी प्रकृति के नियमों के साथ पूरी तरह तालमेल से रहते हैं। ये हवा के रुख, हवा में उपस्थित गंध, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांड में सितारों की स्थिति को बिना किसी कंपास के समझ लेते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण यह है कि पंछी प्रकृति से अलग हटकर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनकर जीते हैं। यहाँ ऋतु से आशय ब्रह्मांड की वो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। पक्षियों का ये एक निश्चित समय पर उड़ान भरना और बिना रास्ता भटके नियत स्थान पर पहुंचकर प्रवास काल को पूर्ण कर वापस लौटना इसी ऋतु का प्रमाण है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत, मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते गाना भी नहीं याद आता है, लेकिन शायद मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो उड़ान भरिए ना, मन की उड़ान को भला किसने रोका है। आइए मन की उड़ान भरते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाजें लता मंगेशकर और सखियों की, शब्दकार हसरत जयपुरी और धुन शंकर जयकिशन की।

लगता है हमारे श्रोताओं को पंछियों से बहुत प्यार है, इसलिए बहुत अच्छी बातें वो लिख रहे हैं। पढ़ने में हमें भी मजा आ रहा है और हमें लगता है जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गांव में हमारे घर के आंगन में कुछ मैना रहा करती थी,

जो पालतू नहीं थी पर वहीं पर रहती थी। हम आंगन में रोटी के बहुत बारीक टुकड़े डाल देते थे और वो उन पर झपटती थी, आपस में लड़ती थी, कई प्रकार की आवाजें निकालती थी और बहुत शरारती होती थी। अच्छा, आपने दृश्य सामने देखा, कितना मजा आया होगा, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमने एक तोता पाला था जो हमारी तरह ही बोलता था। एक दिन उसको अरे आपने मैगी खिला दी, उसको बहुत पसंद आ गई। जब तो भूखा होता मेरा नाम लेकर बोलता किट्टी मैगी, किट्टी मैगी। पापा ने उसको बोला कोई मैगी नहीं खाएगा, तो वो तपाक से बोला पापा गंदे हैं। ये सब सुनकर हम बहुत हंसे। बिल्कुल सही कहा, तोतों की कहानियां तो बड़ी गजब की हैं भाई। बहुत ही मज़ा आता है जब हम तोता पालते हैं या हमारे घर में आता है और अपनी अलग अंदाज से वो बात करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने कहा कि क्या हम जाना चाहेंगे। बिल्कुल हम उड़ान पर जाना चाहेंगे। कुछ संगी साथी बिछड़ गए हैं, उन्हें ढूंढने कि वे कहां पर है उनसे मिलने के लिए। अरे आपने बहुत गंभीर बात लिख दी है ना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी टिप्पणी की है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ कल क्या हो ये किसने जाना, ये भी तो आप जानते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की इबारत मदमस्त आजाद पंछी को याद करने की है, बिल्कुल वैसी ही है। और एक श्रोता ने कहा कि मैंने कभी नहीं पाला पंछी, लेकिन क्योंकि पंछी को पिंजरे में रखना ठीक नहीं है, वे खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं पंछी पाले तो नहीं है पर दाना पानी रखने से बहुत सारी चिड़िया बुलबुल और गिलहरियों का आना जाना लगा रहता है। गिलहरी तो बिल्कुल पालतू जैसी ही है, मूंगफली ना मिले तो चिक चिक करती है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लगती है गिलहरी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक महीने के बाद विविध भारती से जुड़ा हूं। अरे क्या हुआ, एक महीने आप नहीं जुड़ पाए, चलिए अब लगातार जुड़े रहिएगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत व्यस्त हूं, किसी खास काम की वजह से नहीं जुड़ पाऊंगा आज के इस कार्यक्रम से। चलिए हो सकता है आप किसी महत्वपूर्ण काम की वजह से आज का कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप फ्री हो तो विविध भारती से जुड़े रहिएगा। एक श्रोता ने कहा है कि आपने पूछा कि क्या कोई पंछी पाला है, तो मेरा ये मानना है कि एक प्रकार से किसी की गुलामी का प्रतीक होता है। परिंदों की उड़ान उन पर ही छोड़ देनी चाहिए, ना कि पिंजरे में कैद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। किसी को कैद करना चाहे पंछी हो चाहे इंसान हो, सोचिए क्या दर्द होता है उनका, है ना। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत, चितलकर यानी सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में है, राजेंद्र किशन के बोल हैं, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की ही हैं। फिल्म का नाम है बारिश। अच्छा ये बताइएगा किसी पंछी से आपको कोई खास लगाव रहा है कभी?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आई कि आज खुले आसमान तले पंछियों की तरह उड़ान भरने वाले मानव के मन की उड़ान के आकलन की भी बात होगी। इसके अतिरिक्त उड़ान की दिशा और दशा की तुलना भी पंछियों की उड़ान से भली भांति तरीके से की जाएगी। अब देखना यह है कि आज हम लोग किस तरह से समूचे एक घंटे के लिए अपनी उड़ान के साथ उड़ते हुए जीवन की उड़ान में सफल होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, मन की उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं इस एक घंटे में, तो क्या हम पूरे दिन शायद कहीं ना कहीं हमारा मन उड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये एक घंटा जो सुरीला सफर आज हमने मन की उड़ान को दिया है, पंछियों की उड़ान को दिया है, उसमें हम बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं। सफर कर सकते हैं आप, है ना? बताइएगा, कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक शोधा लिखते हैं कि प्रवासी पक्षी मीलों सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं मौसम के अनुसार और फिर वापस लौट आते हैं। हम भी कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। बहुत अच्छा। वहीं एक शोधा लिखते हैं कि मन की उड़ान का मतलब हुआ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, असीमित सोचने की क्षमता। जब हम रोजमर्रा की के तनाव, जिम्मेदारियों और बंधनों से थक जाते हैं, तब हमारा मन एक नई ऊर्जा की तलाश में उड़ान भरता है। ये उड़ान कभी पुरानी खूबसूरत यादों की गलियों में होती है, तो कभी आने वाले कल के हसीन सपनों में। और एक लेखक की कलम, एक चित्रकार के रंग और एक वैज्ञानिक की खोज सब मन की इस उड़ान का परिणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने लिखा है। आपकी जो अंतिम लाइन है उसने हमारा मन जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान भी पंछियों की तरह जीवन भर सफर ही करता रहता है, क्योंकि इंसान को भी सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। जीवन के सफर में हमारे द्वारा किया गया कर्मों के अनुसार एक अदृश्य शक्ति पक्षियों की तरह हमसे भी पहुंचा देती है। अच्छा, आपने कुछ लिखा है पंछी बनी उड़ती फिरूं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उड़ान भरते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंछी तो मैंने पहले एक तोता पाला था जो एक बार पिंजरा खुला उड़ गया, और उसके बाद मेरे पास अभी एक कछुआ है जिसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करता हूं। वैसे मुझे पक्षी पसंद है और मैं रोज उन्हें दाना भी डालता हूं। बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह उड़ते हैं तो मोर का टहू का सुनाई देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आसमान में पंछियों का झुंड लाइन में उड़ता देखकर मन को बड़ा आनंद आता है। आसमान में छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हैं, चहकती हैं, दाना खाती हैं, तो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जी नहीं, मैंने आज कोई पंछी को पिंजरे में आज तक किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में मैंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है जहां बहुत से फ्लावर लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, और सुबह सुबह जो है रंग बिरंगी तितलियाँ और चिड़ियाएँ आती हैं, उनकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद होता है, दिल खुश हो जाता है उनको देख कर और उनकी आवाज़ सुनकर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी चिड़ियों को पालने का बहुत शौक है। मेरी बेटी को, अच्छा, चिड़िया पालने का बहुत शौक है। कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ, इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरी रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी कल्पना करके भी, और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है। ये विषय बड़ा अजीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था। ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंडी पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज़ में मम्मी मम्मी बोलता है तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है, तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं, लेकिन जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है। सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है, अभी अभी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख मिचोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। ही आनंद आज आपकी बातें और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इबारत लिखी है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है, इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सेहरा। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और तर्ज राम लाल की थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारहमास रखता हूँ। पिछली सर्दियों में एक फाख्ता के जोड़े ने अंडे दिए, पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था, जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान बराबर किया और उनका घोंसला ठीक किया, उस पर एक गर्म कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। तब से अभी तक फाख्ते वहीं पर अंडे देते हैं और अभी भी दो अंडे रखे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने उनके को बनाया जो बार बार टूट जाता था। बहुत बड़ा काम है ये। और अब हमारी उड़ान कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुकी है, जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की बोल सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

तो दोस्तों, आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है, उनका संरक्षण और उनकी जो प्राकृतिक आवास है, उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना, ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है, इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

दोस्तों आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़, और उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर।

0: falsehoods about Jammu and Kashmir. An IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जाँच की जा रही है।
2: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
1: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
3: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
1: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने

0: कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर,
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित

0: विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की।

0: बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपने सबसे पहले सुना मिड डे न्यूज, उसके तुरंत बाद दोपहर समाचार। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अभी आप पुनः सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: क्या हुआ।
1: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: दूसरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। अनुराधा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल रविशंकर का संगीत है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने संतोष मिरजकर पुणे महाराष्ट्र से और अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिवाग, पंजाब राव और संदीप पाटिल ने फरमाइश भेजी थी सारथी जिला बैतूल से। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी सतीश पिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखी, लखविंदर सिंह संधु, महावीर संधु और इनका पूरा परिवार मालोट कैंप पंजाब से, माधव नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई थी बालोद छत्तीसगढ़ से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म याराना, किशोर कुमार की आवाज़ है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल थे राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सी पार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखूद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और इनके मित्रगण, बीड शहर से रणजीत कुमार नामदेव, शोरात रीतेश, आकाश रश्मि, रंजना और गबरू। और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना, रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन, नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यसुदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला।

मेत्रा छत्तीसगढ़ से, रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से, और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है, वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है, जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी।

0: नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 उठते रहे हैं। स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं। पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी से
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या ऐन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री HP शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गई। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली।

0: मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
1: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है, अरे देखो ना बाहर जाके के कौन है, तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे लगता है चले। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतारी। आप कैसे घर चले आए इस वक्त, तब तो ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ।
2: नहीं।
1: अरे नहीं, नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही है ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
2: नहीं नहीं।
1: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। ओ, आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी, बताइए ना क्या हुआ है?
2: क्या बताऊं?
1: अच्छा अच्छा ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
2: नहीं।
1: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
2: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
1: क्या?
2: ट्रांसफर।
1: ट्रांसफर आपकी?
2: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे
1: मिली। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया,
2: क्या बताऊं लाजवंती। खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 से अपने जूते घिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
1: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
2: आगरा।
1: आगरा।
3: हाय, क्या हो गया लाजवंती बहन?
4: पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
3: हाय, कौन था बहन?
4: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
3: दिल्ली में था कि बाहर?
1: नहीं बहन, ये बात नहीं, आए जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
3: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
4: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
1: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
3: बहन फिर हुआ क्या?
1: अरे किस्मत फूट गई हमारी तो, किस्मत।
4: भाई साहब की नौकरी?
1: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं, आए क्या बताओ, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
4: अनर्थ?
1: आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
3: हाय राम,
4: सबर करो बहन, धीरज रखो।
2: लाजवंती
1: किसे मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस या घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
3: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
1: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
3: बस बस बहन, उठो, देखो पानी वानी पियो, भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा, मन को शांत रखो बहन, और इसका कोई उपाय सोचो।
1: ठीक तो कहती हो बहन।
4: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाए देती
1: हूँ। नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
4: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।

0: हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
1: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
2: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
3: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उनसे पूछिए तो।
2: ना जाने कौन है।
3: किस कमबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
2: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
3: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
2: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
4: अम्मा, खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
5: पिताजी, आप
2: कृष्ण, तुम
5: इस वक्त यहाँ?
2: इस वक्त यहाँ?
5: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा, आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
3: क्या बताऊं बेटे,
5: हुआ क्या है, कुछ बताइए तो।
2: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
5: ओ, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
2: किसने, किस पर?
5: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
2: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहां के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं।
5: ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
2: बेशक।
5: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
2: रजा, रजा।
5: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं है, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 उनकी खिदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले, और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब, इनकलाब।
6: झड़प बदतमीज,
2: तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
5: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं, जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
2: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
5: वो खाना जो 25 तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
2: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक, दिमाग चल गया तुम्हारा?
5: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका हो, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। ये ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
2: बेवकूफ, पागल, गधे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा?
3: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
5: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर, गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
2: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता है ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
3: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
5: आई एम सॉरी डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था, मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
2: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
3: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, आप जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
2: करना क्या है, क्या हो सकता है, ओनी बड़ी बलवान है लाजो और इंसान बहुत कमजोर।
5: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, आपको कुछ करना चाहिए।
3: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।

0: तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
1: कल से स्ट्राइक?
0: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
2: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
0: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
2: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही
3: मामी मामी पिताजी आप बाप रे
0: कौन?
3: मैं कोई नहीं।
0: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
3: उषा? हाँ, नहीं।
0: तो कौन घुसा है अभी घर में?
3: उषा।
0: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
3: ओ, किसे कोस रहे हैं?
0: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है?
3: ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
0: बुलाओ उसे।
3: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
0: ओ, हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्ने नन्ने मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता। विनय लौट आया कॉलेज से?
3: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
0: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
3: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
0: हौसला रखो लाजवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा। विनय।
4: जी पिताजी।
0: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
4: इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
0: कैसा सवाल?
4: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
0: विनय,
4: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
0: खबर आज ही आई है।
4: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
0: तुम्हारा मतलब क्या है?
4: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
0: ऑर्डर? ऑर्डर? ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है?
4: पिताजी, आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
0: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
4: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बम्बई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगरे हुई है? सब कहेंगे आगरे के पागल खाने में जा रहे हैं।
0: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
4: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बताई देता हूँ, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
0: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
4: कैसे जा सकता हूँ, यहाँ मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
0: तुम्हारा सोशल सर्कल?
4: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क ही नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा।
0: क्या? तो यहाँ हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा कौन देगा?
4: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
0: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ?
4: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
0: और मेरे इस घर बार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे?
4: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगरे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वेलू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद, और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहाँ से वहां, वहां से यहाँ शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहाँ बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
0: मेरे साथ, अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजरों से।
3: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
4: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा, मैं क्या बताऊं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
0: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले, बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहाँ रह सकता रह ले।
3: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बार उजड़ जाएगा।

0: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं ना जाने क्या क्या कह गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
1: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूँ? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूँ और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूँ।
0: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
1: हाँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
2: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
3: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी जी, ये चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, एक कैश जमा करवाना है।
4: लंच के बाद आना।
3: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
4: तो
3: जनाब?
4: फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
3: लेकिन जनाब, वक्त तो अभी भी है।
4: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
5: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई, बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
4: चलो चलो।
3: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
4: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
5: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती है।
4: चलो चलो चलो चलो, चलो।
6: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
5: नमस्कार बड़े बाबू जी।
4: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
7: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
6: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
5: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
4: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
6: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
8: कितने चाय?
6: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
8: और पैसे?
7: ये ले, मैं देता हूँ।
4: अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता बड़े बाबू।
5: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
7: एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
5: नहीं, नहीं, नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
7: ले ले, ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
6: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए, क्यों भाई?
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
7: मगर वो क्या कर सकता है?
5: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा, क्यों भाइयों?
4: सही बात,
5: सही सही, सही, सही है,
6: सही, सही, सही बात।
7: अच्छा तो फिर पहले मैं करमारकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
6: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमारकर साहब के लिए।
7: हाँ सो तो है,
4: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर, क्यों भाई?
5: बिल्कुल
6: सही बात,
7: बिल्कुल सही बात,
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
6: आज ही मिल लीजिए।
7: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
6: बिल्कुल नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच चलेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास, क्यों भाई?
9: बिल्कुल ठीक बात है।
7: तो ठीक है, मैं आज ही करमारकर साहब से मिल लेता हूँ।
2: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमारकर साहब के पास।
10: मे आई कम इन सर?
11: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया
7: सर? आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
11: हाँ हाँ बोलो
7: सर। वो बात ये थी कि
4: आपने तो इतना कुछ किया करमारकर साहब,
12: आपने तो इतना कुछ किया करमारकर साहब के लिए,
4: आपने तो इतना कुछ किया।
12: सर आपको याद होगा, जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
11: हाँ याद है।
12: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
11: याद है बरोबर।
12: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
11: बरोबर।
12: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
11: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
12: आपको सब कुछ याद है?
11: Of course.
12: अगर सचमुच अपने सारे करियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
11: बोलो बोलो, क्या काम है?
12: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
11: मालूम जरूर है, पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड, ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
12: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
11: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
12: बेशक सर, बेशक आप रुकवा सकते हैं।
11: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, और ऊपर से आया है।
12: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर हो जाएगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे। सर मैं
11: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
12: सर मैं आपके पांव पकड़ता हूँ।
11: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलूं मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
12: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
11: क्यों,
12: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं, और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा। जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
11: ओ आई सी,
12: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए, अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर।
11: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है, अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
12: आपकी नाल न घड़ी होगी ना सर वहां पर। हा? फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
11: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल घड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
12: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड।
11: अच्छा, कभी देखा नहीं।
12: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल वो जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
11: ओ आई सी।
12: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
11: कहाँ?
12: वो घर के आंगन में सर।
11: लोधी रोड के क्वार्टर में?
12: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
11: ओ, वो तो 10-12 मील होगा।
12: यस सर।
11: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
12: ओ, आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
11: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
12: सर है तो दिल्ली ना।
11: यस, यू आर राइट।
12: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर, अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
11: हम रुकवा सकते हैं?
12: यस सर, आप रुकवा सकते हैं।
11: ओके, हम रुकवा देंगे।
12: थैंक यू सर।
11: नो, व्हाई थैंक मी, इट इज माय ड्यूटी।
12: थैंक यू वेरी मच, मैं अब चलता हूँ।
11: ओके,
12: थैंक यू सर, थैंक यू।
11: मिस्टर शर्मा।
12: यस सर।
11: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
12: बस सर, आप एक डीओ लिख दीजिए, ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
11: Is that all?
12: Yes, sir.
11: Okay, हम लिख देंगे।
12: Thank you, sir. Thank you. अच्छा, अब मैं चलता हूँ सर।
11: अच्छा, but listen.
12: Yes, sir.
11: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। You know, भाई ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
12: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीव नहीं किया जा सकता।
11: हाँ हाँ, ये ठीक है।
12: थैंक यू सर।
11: अच्छा अच्छा,
12: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
11: पर मिस्टर शर्मा।
12: यस सर।
11: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं, भाई स्टाफ स्ट्रेंथ वही रहेगी ना।
12: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
11: सुनो, नालगढ़ी मेंशन कर दे।
12: नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
11: मिस्टर शर्मा।
12: यस सर।
11: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
12: वो तो सर।
11: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
12: ओके सर।
8: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी की मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों को, FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजीपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं।

0: दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। श्री नवीन ने कहा कि भारत का युवा भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र से जुड़ा है, भारतीय संविधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है और यही कारण है कि उनकी इस तरह की भाषा को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रखे हुए है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। इस बीच एक अन्य बैठक में भारत की प्रतिनिधि प्रिया सरोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति के 81वें सत्र में एजेंडा आइटम 75 के तहत भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। ये सत्र मिशन पर तैनात संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और विशेषज्ञों की आपराधिक जवाबदेही से संबंधित था। प्रिया सरोज ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के आपराधिक आचरण और कदाचार के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। आज महालया पर्व है। ये त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहां से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा भी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमा।

0: आना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा, 1.5 साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है। और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके। उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके। तो उनके पीछे लगा रहा मैं, और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगे ने? मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप?
0: मतलब मेरा लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब डीवीडी हुआ करती थी, तो एक डीवीडी लाइब्रेरी थी, बंबई के एक इलाका है बांद्रा, और वहाँ का जो ओनर था डीवीडी लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे, छगन भाई। तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था, तो मैंने बोला कि यार छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहाँ और वो आए, और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। और वहाँ से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ जो असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते हो। बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके। वहां से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया, और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले। तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता
1: जी,
0: जो बड़े डायरेक्टर है रेड 1 रेड 2 आमिर नो वन किल जैसे का के, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5-6 AD होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा, ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है
1: जी,
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि 4-5 AD सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम मैं कंटिन्यूटी लिखता था
1: जी,
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था, बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है
1: जी।
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है। तब मुझे समझा अच्छा देयर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई
1: जी। तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे?
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली 1-2 बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम
1: जी।
0: तो बड़े 1-2 जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है, जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर NSD FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं तो हम उसमें देखते

0: इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
1: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है।
0: जी सुन लेते।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ
0: जी।
1: हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
0: जी,
1: वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके
1: ऐसे भी कभी कभी होता है
0: जी।
1: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते हैं समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो, क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन। एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं ये?
1: हाँ,
0: तो
1: ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने

0: मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए।
1: हाँ।
0: तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
0: हाँ,
1: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्की का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007
1: हाँ।
0: में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके। बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्डा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्की।
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार के लिए, हम जैसा कह रहे थे, ऐसा लगता है वो ही वो उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने। फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम।
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है
0: जी।
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था। हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 मंथ्स कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए। वो मैं अनमोल अहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो। लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे। बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे। काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो,
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे हैं
1: और टाइम बहुत कम था
0: जी। अगर सेक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये, अगर मुझे सही जानकारी है, तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है?
1: मैंने season 2 की थी, season 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था
0: जी। पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है। ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो
0: जी।
1: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। कर पाते हैं इवेंचुअली, बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है। बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
0: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: मैं
0: में
1: कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूं। क्या है क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है।
0: हाँ।
1: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने। तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
0: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी?
1: हाँ, और फिर एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
0: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब,
1: हाँ, ताकि जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
0: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके 3-4 सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो एक 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस तरह के लोग दिखने वाले, एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से वो आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते ही है, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, कि अगर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है, तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर,
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से वो,
1: हाँ, वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
0: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं, तो कहते कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
1: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं, तो वो नोटिस में आता है जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं। आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे, तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
0: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे,
1: जान जाते हो, अरे यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
0: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते, कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
1: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है, जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में, और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट।
0: हाँ, मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा, और उस तरह से आपको एक अंदाजा।
1: वो होता ही है, मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया, तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके, और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
0: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं।
1: जब भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है
0: जी,
1: सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो, तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, या बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होम टाउन में आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो वहाँ ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
0: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
1: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे।
0: हाँ,
1: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बम्बई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
0: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
1: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए। और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
0: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
1: हाँ हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
0: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
1: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
0: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे
0: आपने?
1: आप और काम करते जाते हैं आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ, अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ, इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें मिलके, प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो, जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को कि अपने आप को विजिबल रखो
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहें, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए,
1: कोशिश जारी रखिए। अगर आप अच्छे एक्टर हो आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, TRPs या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें, उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा, तो वो 1-2 बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
0: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
1: हाँ, वो डेली 6 का रहमान का रहना तू,
0: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद का।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर करो, NSD के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही
1: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
0: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे
1: बढ़ाते हैं। ह्यूमर कुछ भी, जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
0: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
1: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा, घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो

0: मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे, जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली। तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में, बट मैंने ऐसे भी देखा कोई 2-3 ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है क्यों, एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
1: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
0: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में। हाँ। बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको 4 दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर। ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है,
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है।
0: देखो सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट्स टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी।
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेस में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं।
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
0: चूज करते बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी वैसा नहीं किया?
0: आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कैपेबिलिटी अगर आपको पता हो कि एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स है, इवन दो दोनों दिल्ली की हैं, बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था, बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों,
1: अपने किरदार को पकड़ने के लिए
0: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
0: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट, तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वाज डन।
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए?
0: एक बार हुआ था एक फिल्म में, अब मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है, मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था, और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते इसको कास्ट।

0: लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था, वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता है लाइट्स का। तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया, बट नॉट टू हिज एबिलिटी। फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में। लेकिन ये हुआ था, उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो, बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी,
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी। ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के वो
0: बिना
1: आए।
0: दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहां के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता,
1: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है।
0: हाँ वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता।
1: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
0: हाँ मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे
0: नहीं,
1: बाद के लिए
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने डायरेक्शन तो आपने कहा।
0: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी,
1: अच्छा,
0: तो घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदगी कैसी है बहेली,
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं। आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर

0: एक्टर्स जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए आप
0: हाँ,
1: यहाँ पर।
0: अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है एक किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
0: मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत, संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब दीजिए इजाजत।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
3: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
4: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
3: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों को। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, शाम के 5 बजने ही वाले हैं, यानी समय हो गया है हमारी आज की पहली सभा को यहीं पे समेटने की। इसके साथ ही मैं राजेश दत्ता आपसे लेता हूँ विदा। आगे आपके साथ रहेंगे सावित्री राणा। धन्यवाद, नमस्कार।

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6:12 हुए हैं। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं सावित्री शुरू करती हूँ आज की हमारी दूसरी सभा।

आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:05 पर आप सुनेंगे मार कार्यक्रम के तहत कुछ मार आधुनिक गीत गायक कलाकार है जप्ता लालरिंगुम थिएक और उनके साथी। 6:25 पर आज जेमी कार्यक्रम में लुंगबुइले जेमी और साथी सुनवाएंगे कुछ जेमी लोकगीत। 6:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से संध्या रांचोलिक बातोरी।

सात बजे डिमासा कार्यक्रम में आज खांडोलाल हगजर और साथी सुनवाएंगे कुछ डिमासा लोकगीत। 7:20 पर आज वैसो मिलिक भी और साथी सुनवाएंगे कुछ कार्बी भक्ति गीत। थोंगचिन लियन गुइते और साथी सुनवाएंगे कुछ कुकी आधुनिक गीत 7:40 पर।

8:30 पर आप सुनेंगे टीचर्स प्रोग्राम, 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। समाचार के बाद रात 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग का, और उसके पश्चात 9:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। ये थी जानकारी हमारी आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।

आइए अब शुरू करती है आज के कार्यक्रमों पर। सबसे पहले सुनते हैं मार कार्यक्रम में कुछ मार आधुनिक गीत। गायक कलाकार है जबता लाल रिंगुम थेक और उनके साथी।

0: आप सुन रहे थे मार कार्यक्रम में कुछ मार आधुनिक गीत। गायक कलाकार थी जैप्टा लाल रिंगरूम थिंक और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: प्रस्तुत है जेमी कार्यक्रम, आज सुनिए लुंगबुली जेमी और साथ ही से कुछ जेमी लोकगीत।

आप सुन रहे थे जेमी कार्यक्रम में कुछ जेमी लोकगीत गायक कलाकार थे लुंगबुइली जेमी और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आंचलिक बातोड़ी गुवाहाटी केंद्र से।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी सुनेंगे डिमासा लोकगीत खंडोलाल हगजर और साथियों से।

Ay, amanın çelenge, laylaro.

Ay, le, que le,

Bajahi jeng tarsa.

Ikelim shel hashom sorene.

이 김기지 발기량.

你想回西厢去接下张柔，安排西东。

Belén lại số xa không ra đâu, đâu vào đây đâu là đâu, hà giang đâu.

Magyar Kislyam Songlado.

Rìm say cho đau quá nén.

khê lim sa lai song đau quá nên.

0: 哎呦，玩笑吧你，说话来，不是吧你说话来。
1: आप सुन रहे थे डिमासा कार्यक्रम, जिसमें आज आपने सुने खंडोलाल हगजर और साथियों से कुछ डिमासा लोकगीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है।
2: सुनती हो? कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: अब प्रस्तुत है कार्बी कार्यक्रम, जिसमें आज सुनिए कार्बी भक्ति गीत वैसो मिलिक पी और साथी से।

0: आप सुन रहे थे कार्बी कार्यक्रम में कुछ कार्बी भक्ति गीत। गायक कलाकार थे वैसो मिलिकपी और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में अभी सुनेंगे कुकी आधुनिक गीत थोंग चिन लियन गुइते और साथियों से।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: आप सुन रहे थे कुकी कार्यक्रम में कुछ कुकी आधुनिक गीत। गायक कलाकार थे थोंग चिलेन गुइते और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अब प्रस्तुत है टीचर्स प्रोग्राम, जिसे प्रस्तुत करेंगे जुदित रांगचल।

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 100.2 FM मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग। मैं हूँ आपकी दोस्त जिदित और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे टीचर्स प्रोग्राम में। शिक्षा के क्षेत्र में ये जरूरी नहीं कि विद्यार्थी कितना जानकारी याद रखता है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो उस जानकारी को कितना समझता है और उसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसी विषय पर चलिए आज हम बातचीत करते हैं हमारे आज के अतिथि के साथ, जो है मिस्टर उदय निरोला जी, एक टीचर है जतिंगा पब्लिक स्कूल। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू
0: जी। तो सर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे बोर्ड्स के बारे में, बोर्ड्स क्वेश्चंस के बारे में, जो एसएप का है, असम बोर्ड का है, ये नए एग्जामिनेशन पैटर्न में पहले से पैटर्न कंपेरिजन में काफी चेंजेस आ रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: ओके, मेरे हिसाब से जो अभी जो नया पैटर्न ASSEB ने डाला है क्वेश्चन पेपर में, तो वो पैटर्न शायद स्टूडेंट को और कॉम्पिटिटिव बनाएगा इन द फ्यूचर, बिकॉज वो लोग को आफ्टर क्लास 10 हो या आफ्टर क्लास 12 डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना पड़ेगा। सो उस हिसाब से नया एग्जामिनेशन पैटर्न का मेन पर्पज स्टूडेंट को सिर्फ मेमोराइजेशन से निकाल कर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की तरफ ले जाना है। पहले स्टूडेंट्स अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को मेमोराइज करके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते थे, लेकिन एजुकेशन का पर्पज सिर्फ इंफॉर्मेशन को याद रखना नहीं है। स्टूडेंट्स को ये भी समझना मतलब चाहिए कि कोई कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है और उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए मुझे लगता है कि

0: नया पैटर्न स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो एबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश है,
1: कोशिश कर रहे हैं।
0: यस।
1: तो आपको क्या लगता है इस कोशिश में इज इट डेवलपिंग और आपके हिसाब से?
0: अभी स्टूडेंट्स को ये अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, बिकॉज वो रोट लर्निंग प्रोसेस में पहले ही मतलब इंक्लूड हो गए थे, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट दे कैन अडॉप्ट इट।
1: जी, तो आपने बोला कि पहले स्टूडेंट्स प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मेमोराइज करके ज्यादातर उस पे डिपेंड करते थे, तो आपके हिसाब से ये रोट लर्निंग का अप्रोच इतना कॉमन क्यों हो गया आजकल?
0: अच्छा, इसके इसके लिए सिर्फ स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। इसके पीछे एग्जामिनेशन पैटर्न, फिर क्लासरूम प्रैक्टिसेस, टाइम लिमिटेशंस और मार्क का प्रेशर भी होता है। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके स्टूडेंट्स को रोट लर्निंग प्रोसेस की तरफ धकेल दिए एक्चुअली। सो जब स्टूडेंट्स को बार बार प्रेडिक्टेबल टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलते रहेंगे, तो उनका फोकस ऑटोमेटिकली उन क्वेश्चंस के ऊपर जाएगा एंड वो उस क्वेश्चंस के आंसर्स को याद करना स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मेमोराइजेशन कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है। डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, फैक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखना भी जरूरी है। प्रॉब्लम तब होता है जब स्टूडेंट्स बिना समझे बाय हर्ट करना शुरू कर देते
1: हैं रट्टा मारना।
0: एंड दैट प्रोसेस, मतलब इसीलिए हमें मेमोराइजेशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि मेमोराइजेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग को भी एक साथ लेके आगे जाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। और अगर नए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अभी भी टेक्स्ट बुक से लिए जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस आंसर करने में डिफिकल्टी क्यों हो रही है?
0: मेरे हिसाब से डिफिकल्टी सिलेबस में नहीं है, बल्कि लर्निंग के अप्रोच में है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट को अगर कोवेलेंट बॉन्ड समझा दिया जाए, उसका डेफिनेशन याद करा दिया जाए, एंड एग्जाम में वही क्वेश्चन आए डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो लिख देगा। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मतलब एमोनिया जो कि NH3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड क्यों हुआ, तब वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज उस कॉन्सेप्ट में उसने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं। सो इसी तरह मैथमेटिक्स में भी स्टूडेंट्स फार्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाए तो उसको कॉन्सेप्ट समझकर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे स्टूडेंट पीछे रह जाता है। अभी बिकॉज रोट लर्निंग का जो प्रोसेस था उसके कारण वो चीज।
1: सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, और दूसरा सब्जेक्ट्स में होते होंगे, क्योंकि एक होता है कि एनालिसिस क्वेश्चंस होता है, और आजकल के बच्चे थोड़े स्मार्ट है नो डाउट, लेकिन उन लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आया तो वही क्वेश्चन सेम आंसर्स को दूसरी तरीके से वो लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे समझाए कि ये जो क्वेश्चंस है ये एक ही फॉर्म्स का है और कंसेप्ट का है?
0: अच्छा, इसके लिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ एक्सपोजर देना चाहिए, एंड ये एक्सपोजर बिकॉज टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस है वो एनफ नहीं होते मेरे हिसाब से। तो मतलब डिफरेंट पब्लिशर्स अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बैंक्स पब्लिश करते, तो वो अगर CBSE के पैटर्न में जो क्वेश्चंस आते उनके लाइब्रेरी में जाके वो क्वेश्चंस फॉलो करे, तो शायद उनको वो एक्सपोजर मिल जाए एंड ग्रेजुअली वो आंसर राइटिंग भी सीख लेंगे।
1: आजकल ज्यादातर क्लास 11 क्लास 12 में भी MCQs बहुत ज्यादा हो गए। आपको क्या लगता है कि MCQs जरूरी है, बहुत अच्छा है?
0: हाँ, मुझे लगता है कि MCQs जरूरी होंगे, बिकॉज MCQs ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में अप्लाई कर सकता है, तो कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में जब अप्लाई करने का टाइम आए वो एग्जैक्टली इवैल्यूएट होता है थ्रू द MCQs, मुझे लगता है।
1: ठीक है, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट MCQs एंड डिस्क्रिप्टिव, उसका इम्पोर्टेंस?
0: अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली स्टूडेंट्स को अपना जो मतलब उसके पास जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक्सपोज करना पड़ता है, टीचर को समझाना पड़ता है, राइट? स्टूडेंट्स का यही कमी, वो आंसर राइटिंग का स्किल्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से पता चल जाता है। बट MCQs क्वेश्चन से दिमाग कितना फास्ट हो सकता है या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकता है, वो सब चीज MCQ के थ्रू इवैल्यूएट होता है। तो स्टूडेंट्स को दोनों में एक्सेल होना चाहिए मेरे हिसाब से।
1: दोनों में एक्सेल होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कई सालों से रट्टा मारने का जो मेथड है जो फॉलो कर रहे हैं, उनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में टीचर्स किस तरह उसको हेल्प कर सकते?
0: अच्छा, तो स्टूडेंट्स को टीचर्स एग्जैक्टली अगर क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट समझाते समय ये कॉन्सेप्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करे, तो आई थिंक वो बेटर मतलब समझेंगे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, साइंस में सिर्फ डेफिनेशन याद करवाने के वजह टीचर अगर पूछ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कहाँ ऑब्जर्व होता है, तो स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को, तो वही।
1: आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो या

0: नर्सरी से लेके क्लास 10 तक ही ले लो, 11, 12 को छोड़ के, तो सब रट्टा मारना सीख। तो हम क्लासरूम्स में हम ऐसा क्या करें? टीचर्स, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए इस रट्टे मारने वाला जो मेथड है उसको बंद करने के लिए ग्रेजुअली?
1: मुझे लगता है कि क्लासरूम फ्रेंडली होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में ओपन कम्युनिकेशन हो एंड स्टूडेंट्स ओपनली टीचर्स को क्वेश्चन भी पूछ पाए। अभी स्टूडेंट्स थोड़े नटखट तो हो ही जाते हैं, बट फिर भी अगर वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए तो स्टूडेंट ग्रेजुअली कम्फर्टेबल होंगे, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना ईजी हो जाएगा टीचर्स के लिए भी। तो मुझे वही लगता है कि क्लासरूम को अगर थोड़ा ईज कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स के प्रति हम लोग भी, मतलब स्टूडेंट्स ओपन अप हो जाएंगे हमारे टीचर्स के साथ एंड कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है उसको वो लोग जो जो कन्फ्यूजन उनके दिमाग में होता है, वो तो क्रिएटिव भी होते हैं तो उनका अलग अलग टाइप का कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन हम लोग उनको मतलब सॉल्व कर सकते हैं एंड उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं उस तरह से।
0: लेकिन ऐसा भी हो सकता है टीचर्स बहुत क्लोज है स्टूडेंट्स से, लेकिन उसका फायदा स्टूडेंट्स भी उठा सकते
1: हैं। स्टूडेंट्स का ये बात होता है, ऐसा मैंने भी बहुत क्लास में फेस किया है। स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स को ज्यादा ही ओपन माइंडेड से हम लोग पेश आए तो वहाँ पे हमें बैलेंस रखना पड़ता है, बेसिकली ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, ज्यादा ओपन माइंडेड भी नहीं, ठीक बैलेंस एक रख।
0: स्टूडेंट्स को आपने डेली जो स्टडी रूटीन है प्रैक्टिकल चेंजेस करना चाहिए, या जिसे उनकी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस या कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सके?
1: हाँ, स्टूडेंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूटीन का ज़रूरत नहीं है बेसिकली। कुछ कुछ सिंपल हैबिट्स अगर वो डेवलप कर ले तो वो बेसिकली उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ते समय सिर्फ आंसर मेमोराइज करने की बजाय उसका मीनिंग अगर समझने ट्राई करें, एंड इस केस में पेरेंट्स भी शायद हेल्प कर सकेंगे, उनको गाइड कर सकेंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद कोई टेक्स्ट बुक क्लोज करके अपने वर्ड्स में अगर वो छोटा सा एक वर्ड्स एक सेंटेंस में भी वो लिख पाए वो टॉपिक को, तो उधर से उन लोग का मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो झलक उठता है कि उन्होंने क्या समझा है क्या नहीं समझा है, राइट। और एक बात बोलना चाहता हूँ, लाइक रिविजन्स, अभी का टाइम में क्लास 9 बोले या क्लास 7, 8 के स्टूडेंट्स या 10th, 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स को, वो लोग का मैं थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्व कर रहा था स्टूडेंट्स को, लाइक दे वो लोग खाली एग्जाम से पहले सब कुछ रिवाइज करना ट्राई करते हैं, एग्जाम के 10 दिन पहले 5 दिन पहले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, गवर्नमेंट हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उन्होंने शेड्यूल किया है कि सर्टेन मंथ्स में सर्टेन चैप्टर्स, 1 मंथ में 2 चैप्टर्स। तो अगर स्टूडेंट्स ये रियलाइज करें कि एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो अगर वो रिविजन्स इंस्टेंटली करें, रिविजन्स इन द सेंस उनको मेमोराइज करना नहीं बोल रहा हूँ मैं, सपोज एक फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट सिखाया गया क्लास में, राइट, तो नेक्स्ट दिन जाके वो लोग उसी दिन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफरेंट एमसीक्यूज थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक यूट्यूब में भी मिलेगा, तो उनके थ्रू अगर वो लोग डिफरेंट एमसीक्यूज या डिफरेंट रीजनिंग बेस्ड निकाल के प्रैक्टिस करे तो वहां पे ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाता है, उनको वो बोरिंग प्रोसेस से रिवाइज करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट वे हो जाएगा एंड वहां पे एंगेज भी हो पाएंगे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि कर सकते हैं।
0: आपको क्या लगता है कि जो नया एग्जामिनेशन पैटर्न है स्टूडेंट्स की ओवरऑल लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा?
1: मेरे हिसाब से नए पैटर्न में लर्निंग क्वालिटी इम्प्रूव करने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की तरफ एनकरेज करता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जो स्टूडेंट्स कई सालों से रोट लर्निंग सिस्टम में अकस्टम्ड है तो उनके लिए ट्रांजिशन होना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए सिर्फ एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज करना इनफ नहीं है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस, प्रैक्टिस मटेरियल और टीचर का सपोर्ट भी मिलना चाहिए,
0: क्योंकि वो पहले से ही प्रेशर में है, प्रेशर में है।
1: यस यस, तो वो लोग को चेंज करना थोड़ा ऑब्वियसली टाइम लगेगा, हम लोग एज एन एडल्ट हम लोग को ही टाइम लगता है तो उन लोग को ऑब्वियसली टाइम लगे, बट प्रॉपर मटेरियल अगर सप्लाई किया जाए, प्रॉपर मटेरियल के थ्रू उन लोग को ट्रेन किया जाए तो दे विल ऑब्वियसली बी एबल टू,
0: क्योंकि ये जो एकेडमिक प्रेशर है ही उन लोगों का, उसको ऐड भी कर सकते हैं।
1: yes, yes.
0: और आज के टाइम में सोशल मीडिया, फिर से हम बात करेंगे, स्टूडेंट्स की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है ना, जैसे कि इंस्टाग्राम, जो छोटे छोटे बच्चे भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब या शॉर्ट्स, इस तरह के जो शॉर्ट फिल्म्स कंटेंट का स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन अटेंशन जो है स्टडी हैबिट्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है?
1: अच्छा, सोशल मीडिया को मैं कम्प्लीटली नेगेटिव तो नहीं मानता, बट सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टूडेंट्स को एजुकेशनल वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। मे बी इनफैक्ट सोशल मीडिया यूज करके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करना ट्राई करता हूँ थ्रू सोशल मीडिया इटसेल्फ। स्टूडेंट्स को मैं एंकरेज भी करता करता हूँ कि ये रिसोर्सेज तुम भी फॉलो करो सो दैट यू कैन गो विद दैट, वही है. लेकिन एक्सेसिव और अनप्लैंड यूज अगर होता है सोशल मीडिया का तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. उसके लिए थोड़े पेरेंट्स को भी
0: इंटरफेयर करना चाहिए,
1: इंटरफेयर करना चाहिए एंड कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट्स को रखना चाहिए, बिकॉज दे आर इन देयर टीनेज. टीनेज में एक प्योर प्रेशर भी रहता है, वो लोग कहीं मतलब मिसिंग आउट ना हो जाए वो सब.
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल.
1: शॉर्ट फॉर्म का वीडियोस का और एक बात बोलता हूँ, लाइक शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कंटेंट की वजह से स्टूडेंट्स बार बार अपना अटेंशन स्विच कर लेते हैं, तो थोड़े थोड़े शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में उनका दिमाग ऐसे ट्रेन होता है कि थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दे फील गुड, उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगेगा, दे विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्टेंट अगेन. सो ऐसे करते करते उनका दिमाग अगर उस हिसाब से ट्रेन हो जाए एक्सेसिव यूज़ के कारण, तो वो लोग एक लंबा चैप्टर को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पाते. एंड डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम अगर डिफिकल्टीज फेस करे तो वो लोग ट्राई करेंगे कि उसको स्किप करके थोड़ा इजी वाला प्रॉब्लम करें. तो ऐसे करते करते मतलब उनका करियर में बहुत हैम्पर हो जाता है, उनका लर्निंग प्रोसेस में बहुत हैम्पर हो जाता है.
0: जी बिल्कुल. इस सोशल मीडिया के ऊपर सेमिनार या फिर अवेयरनेस देना चाहिए?
1: यस, ऑब्वियसली होना चाहिए, बिकॉज बच्चे दे आर मतलब अवेयर इतने नहीं है सोशल मीडिया के रिगार्डिंग. एंड ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं लाइक जहाँ पे बच्चे सोशल मीडिया में इतने इंडल्ज हो जाते हैं उसके बाद कुछ क्राइम में चले जाते हैं, तो या कुछ कुछ कुछ केसेस में बहुत सारे फीमेल्स के केसेस में स्पेशली फंस जाते हैं कोई कोई सिचुएशंस में जहाँ से वो आउट नहीं हो सकते, एंड वो फियर की वजह से पेरेंट्स के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिक वहाँ पे इंडल्ज हो जाते हैं वो लोग. तो
2: सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया. दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. भाजपा ने कहा उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है. विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया. रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए. और अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए. अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की. उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया.
3: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
4: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए. इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है. हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है.
2: अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का 4th सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है. भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की.
5: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है. हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए. वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है.
2: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है. गुजरात निवासी कैप्टन

0: इस मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेलावीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात PM जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
5: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
4: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
6: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
4: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
7: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
1: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल

0: में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
2: आपके गीत दोस्तों, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलंग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूजडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर व्हाट्सएप करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अब प्रस्तुत है फोनिंग प्रोग्राम, जिसे प्रस्तुत करेंगे सिद्धार्थ पांडे।

0: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुठाई चिबाई कुलुम खुबले कार्डम। आकाशवाणी हफलों की ओर से मैं सिद्धार्थ पांडे लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा और प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो हफलों। एक हफ्ते के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए चलिए इस हफ्ते के सफर को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हफलोंग,
1: मैं जिन्हें समा बोल रहा हूँ, जुरहट में बोल रहा हूँ।
0: जी, जोरहाट से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप?
1: मैं डिंकी कोटा है, शिक्षकों में आप मोहम्मद की गाना बता दिए, आपका पसंद है।
0: मेरी पसंद का क्यों सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं आपका पसंद है गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: हम आशा करेंगे कि जो गाना आप तक पहुंचा रहे हैं ये आपको जरूर पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हाफ लॉन्ग
1: जी, मैं बैटन मुंडा बात कर रहा हूँ चौराहे देवसुनारी से। मैं
0: जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, और आप कैसे सर?
0: मस्त हैं? और वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: यहाँ का तो मौसम मौसम सुहाना है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, धूप भी नहीं है, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हाँ
0: और दुर्गा पूजा आने ही वाली है, उसकी तैयारियाँ कैसे
1: जी
0: हो
1: जी सर,
0: रही है
1: तैयारी
0: वहाँ?
1: सर बिल्कुल मतलब बराबर चल रहा है। तो
0: जी,
1: घर की सफाई लेकर इधर कपड़े खरीदना ये सब।
0: कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो फिल्म का नाम है जख्मी सिपाही, इसमें
0: जी
1: गाना है तुम शर्मा के देखोगे, गाना सुनना है। और दोस्तों के नाम डेडिकेट करना है, अमर बसुमतारी, विमल बसुमतारी, छात्रा जिनेन्द्र बसुमतारी, और आकाशवाणी हम लोग सुनने वाले सभी दोस्तों के लिए और सभी अनाउंसर के लिए रहेगा, आपके लिए भी सर।

0: हेलो हफलोंग।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से। बहुत
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, और अभी तो उमस और गर्मी है अपने छत्तीसगढ़ में,
0: जी
1: और अब पितृ पक्ष की जाने वाला है और शुरुआत होने वाला है अपना देवी माता का, दुर्गा माता का नवरात्रि आने वाला है सर।
0: जी, उसकी तैयारियां कैसी हो रही है वहां?
1: यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरी धूमधाम से हो रहा है सर। सर
0: बहुत ही बढ़िया। क्या सुनवाए आपको?
1: 11 तारीख को अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है,
0: जी
1: उन्हीं के फिल्मों पर फिल्माया गया है, याराना फिल्म का है सर। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार।

0: हेलो हाफलोंग।
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना परिचय देंगे?
1: मैं रमेश पात्रो बेतियोनी स्टेट गुलाट असम से बात कर रहा हूँ।
0: रमेश जी, क्या हाल चाल है? दुर्गा पूजा की तैयारियां कैसी
1: आजकल
0: हो रही है गोलाघाट में?
1: गोलाघाट में तो पूजा का तैयारी पूरा धूमधाम से चल रहा है। मेरा भी हालचाल ठीक ही है, और
0: जी,
1: आपका बताइए।
0: अरे मस्त हैं, इसलिए तो आपसे बातचीत हो पा रही है।
1: आज शक्तिमान मूवी का एक गाना है, जी ना लगे लगे बिन तेरे यारा।

0: हेलो हफलोंग।
1: मेरा नाम हितेंद्र दास, ग्राम कुदाली, नगर जिला त्रिवेणी से बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: दुर्गा पूजा की तैयारियां कैसे चल रही है आपके वहाँ, आपके शहर में?
1: बहुत धूमधाम से चल रही है, और तो नया कपड़ा खरीद रहा हूँ।
0: अब एक बात बताइए कि श्री भूमि में कौन से पूजा पंडाल ऐसे हैं जो सभी लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं?
1: जैसे श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब का पूजा, मुद्दो श्री भूमि क्लब का पूजा पंडाल देखने के लिए बहुत लोग आते
0: जी, वैसे तो सभी पूजा पंडालों को देखने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन उन दोनों में ज्यादा भीड़ रहती है ना?
1: हैं। वो काश होता है, हर बस काश होता है वो, और बाहर से भी गाने के लिए लोग आते हैं। बाउल गान या कुछ सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए बाहर से लोग भी आते हैं।
0: ओके, बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अब आपकी पसंद क्या है आज की?
1: दीजिए एक फूल दो माली मूवी से, ये फोड़ता हटा दो, ये फोड़ता हटा दो, जरा मुख दिखा दो।
2: ये

0: हेलो हफलोंग।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: डी आर नादवानी हूँ, चकबड़कम छत्तीसगढ़ से। पकड़ दुकान है, थोड़ा बिजी थे, थोड़ा अभी पितृ पक्ष चल रहा है, थोड़ा खाली हो गए हैं। यहाँ मौसम की बात बताओ, मौसम में अच्छा है ना, बरसात है ना, गर्मी है ना, ठंड है, बहुत बढ़िया मौसम है। रात तो हल्की हल्की गुलाब ठंडे होने लगी है कल से।
0: मौसम बड़ा ही सुहाना है। कौन से गाने की बौछार
1: जी
0: करें?
1: गाना सुना सर, चलिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की जवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी।

0: हेलो हफलोंग,
1: नमस्ते, मैं विकास प्रभा बोल रहा हूँ असम से। जी,
0: असम की कौन सी जगह से
1: असम
0: बोल रहे हैं?
1: कामरूप डिस्ट्रिक्ट से विकास
0: जी
1: प्रभा बोल रहा हूँ। मैं तुमको ना फूल बाएंगा फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, बिंदिया सुन के सॉन्ग।
0: ओके, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: अभी भी मैं माँ के साथ मैंने काम कर रहा हूँ।
0: चलिए अपनी पसंदीदा गाने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं हावरागढ़ से सर।
0: नाम बताएंगे?
1: मेरा नाम इखलास सर। मैं काम करना है सर, एक काठ मिस्त्री काम करना है। अरविंद भाई एफ एम रेडियो पहले अरुचि करना है सर।
0: जी, अभी आप काम में हैं?
1: काम है छुट्टी में सर, अक्षय कुमार और भूदेव दूसरी फिल्म का गाना है सर।
0: आप गाने का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो

दोस्तों, इन्हीं कॉल्स और गानों के साथ ही हेलो हाफलोंग का आज का सफर अब हो चुका है पूरा। इस हफ्ते के बाकी के कॉल्स और गानों के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे और जारी रहेगा सफर मनोरंजन का हेलो हाफलोंग के साथ। श्रोताओं, जाने से पहले आपको बता दें, हेलो हाफलोंग की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। और प्रोग्राम आपके लिए पेश होता है हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे। अब आप नोट कीजिए, हमारा नंबर हमें कॉल करने के लिए नंबर है 9435700596। जिन श्रोताओं के कॉल आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं, उन सभी श्रोताओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले 3 हफ्ते के बाद ही आप इस कार्यक्रम में कॉल लगाएं, ताकि

हमारे बाकी जो कॉलर्स हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले। कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। अब अपने दोस्त सिद्धार्थ को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरी ओर से जुठाई चिबाई कुलुम खुबले कार्डम और मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फोनिंग प्रोग्राम हेलो हाफलोंग, जिसके प्रस्तुतकर्ता थे सिद्धार्थ पांडे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।
1: हेलो हाफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।

0: दादू ये कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रगीत।

ये था आज का हमारा चित्र गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी के साथ ही समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजने ही वाले हैं। कल सुबह की पहली सभा में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी सावित्री को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।